0: वोट, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी।
1: 89.6, 89.6,
2: it's hot.

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Mirci, burka.
1: हेलो
2: हेलो मुकेश जी.
1: कौन?
2: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई.
2: हाँ वो नहीं हो पाया सर.
1: हाँ नहीं हो पाया
2: सर. वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की.
1: हाँ
2: सर वो भी हो नहीं पाई है. वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार रोज के तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया है. क्या मजाक ही क्या है ये.
2: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई.
2: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर. वो
1: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है. मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
2: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर. वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: है
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या.
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ. मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर. मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की.
1: कैसी FIR. दिमाग खराब हो गया तेरा. पागल तो नहीं है तू.
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे. आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: गुस्सा ना करूँ. नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है. हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया.
1: उसमें
2: ग्रीस ग्रीस लगाया. उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
1: ग्रीस कितने का. 5 रुपए का लगा. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में तुम्हारे वर्कशॉप में.
2: अच्छा सर
1: मुझे चाहिए अपनी वापस.
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें.
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें. हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ. मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
1: तो जान निकाल दी हमारी.
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में. बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए. गुस्सा खत्म करिए.
1: कुकड़ू कू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी. सीरियसली माही.
6: यस बेबो.
5: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ.
6: यस.
5: कैच क्या है.
6: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो.
5: आई स्टिल कांट बिलीव इट. नो कैच.
6: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.
7: खट खट.
8: कौन है.
7: अज्जू.
8: अज्जू कौन.
7: अज्जू ना आए बालमा सावन बीता जाए. होए.
8: खट खट. Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

इज सिंपली आफरीन राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड सुबह मुझे बताइए आपकी जो शुरुआत होती है मॉर्निंग की ऑफिशियली कब से स्टार्ट होती है, अलार्म बजने पर, चाय कॉफी के बाद होश आता है, या जब आप फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ भाई अब उठना ही पड़ेगा यही काम है, या फिर जब आप गाड़ी में बैठ जाते हो फाइनली ऑफिस के जाने के लिए कि हाँ अब हमारी मॉर्निंग हुई है. बिकॉज ऑनेस्टली हर किसी की मॉर्निंग का अपना एक अलग सिस्टम होता है. किसी के घर में ऑलरेडी फुल ऑन ट्रैफिक केओस चल रहा होता है, किसी का स्कूल रन शुरू हो गया होता है, कोई ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, और कोई अभी भी मेरे ख्याल से बेड पे बस 5 मिनट्स और निगोशिएट कर रहा होगा. व्हाटएवर स्टेज ऑफ द मॉर्निंग यू आर एट, मैं आ गई हूँ यहाँ पर आपको कंपनी देने के लिए और एक गारंटी देने के लिए कि भाई देखो शुरुआत अगर हमारे साथ की है ना 89.6 FM पर मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन के साथ, तो जबरदस्त गाने और जबरदस्त मूड इज एब्सोल्युटली गारंटीड. सो लेट्स स्टार्ट द डे, लेट्स रादर किक स्टार्ट दिस डे विद दिस फैंटास्टिक ट्रैक कमिंग अप नेक्स्ट. माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: बॉलीवुड में एक ट्रेंड तो आपने नोटिस किया है, हर दूसरी फिल्म का ना सीक्वल बन रहा है, लेकिन अब जिस फिल्म की सीक्वल की खबर आई है ना, वो थोड़ी सरप्राइजिंग है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन है आपके साथ दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और
1: मिर्ची स्पॉट बॉय बॉलीवुड की अंदर की खबर, आफरीन मैडम बताए क्या?
0: वेल मुझे तो पता है, लेकिन क्या आपको याद है विद्या बालन की फिल्म द डर्टी पिक्चर 2011 में रिलीज हुई थी और विद्या बालन की परफॉर्मेंस ने काफी हेडलाइंस बनाई थी। वेल अब प्रोड्यूसर एकता कपूर ने कंफर्म कर दिया है कि द डर्टी पिक्चर 2 बनने वाली है। वेल एकता का कहना यह है कि इस फिल्म के लिए एक कहानी है जो वो बताना चाहती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओरिजिनल फिल्म को विद्या बालन ने अपनी परफॉर्मेंस से इतना मेमोरेबल बना दिया था कि सीक्वल के लिए एक्सपेक्टेशंस नेचुरली अब हाई होंगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब विद्या बालन सीक्वल में वापस आएंगी या इस बार किस नई एक्ट्रेस को कास्ट किया जाएगा। फिलहाल लीड एक्ट्रेस को लेकर ऑफिशियल कन्फर्मेशन सामने नहीं आई है, बट मुझे एक और चीज की क्यूरियोसिटी ये है, क्या सीक्वल ओरिजिनल स्टोरी से कनेक्टेड होगी या फिर कोई अनदर, कोई एक अलग ही एक्ट्रेस के बारे में द डर्टी पिक्चर 2 आने वाली है। वेल ये तो वक्त ही बताएगा और यहाँ पर मिर्ची मॉर्निंग्स पर अंदर की खबर में आफरीन जरूर बताएगी। मीनवाइल आप बने रहिएगा मेरे साथ ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: This song is driven by Unipart, your one-step destination for quality auto parts, trusted brands and unbeatable value. Unipart, a part of your life.
1: Well, Zubin Garg ki awaaz mein ye gaana from the movie Gangster, yaar, matlab rongte khade ho jaate hain jab bhi main ye gaana sunti hoon. What a beautiful composition this is. Very good morning and welcome back. Simply Afreen ka saath hai. This beautiful morning. Morning thodi si extra aapko aaj khubsurat lagegi. Bahut acha lagega. Sab log aapko acche lagenge because yaar weekend hai. Ab weekend par na shikwa shikayat nahi hoti hai. Ki yaar jo bhi hota hai kisi ke saath mein kuch pange ho gaye, kuch pura ho gaya aaj ke din mein. To aap na use nazarandaz karke aage badh jate hain. Well, chalo khali ali dekha jayega. Agle hafte dekha jayega. Ab weekend ke hum josh mein aa gaye hain. Aise hi kuch hota hai kya aapke saath? मेरे साथ तो एक्चुअली में ऐसा हो जाता है बट हैविंग सेड दैट मेरा अभी जो टाइम है और जो चीज कहने का वक्त है उस तरफ चलती हुई मैं
2: नाम तो जानते हो मेरा तापमान सलमान
3: वेदर अपडेट
1: हाँ जी वेदर की उम्मीद हर रोज हमें रहती है कि यार आज अच्छा हो जाए आज अच्छा हो जाए और बस ऐसी ही उम्मीद जो है हमारी कायम रहनी चाहिए और कहीं ना कहीं वो खरी उतरते हुए ऐसा लग रहा है आपको मुझे तो लग रहा है देखो शाम के वक्त वेदर काफी बेहतर हो गया है आंकड़ों में अगर बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम 29 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम मतलब मिनिमम भी देख लीजिए 29-20s में आ गया है एंड वो दिन भी दूर नहीं है जब मैं आपको मैक्सिमम भी 20s में बताऊंगी बस एक दो महीने की बात है इसी वही कहना है मैंने कि उम्मीद पे दुनिया कायम है एक्चुअली खलबली तो हो रही है यार कब वो अच्छा वाला वेदर आएगा कब हम बीच पर जाके बारबेक्यू करेंगे कब हम यहाँ के पार्क्स एंजॉय करेंगे और समंदर किनारे जाके बैठेंगे मीनापोर्ट पर आएगा आएगा वो भी दिन आएगा मीनू आए खलबली है यार रहमान और असलम की आवाज में और मिर्ची फ्रॉम द मूवी रंग दे बसंती माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ इट्स हॉट

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अनिल कपूर सर, I'm sure आप ये सुन सुन के थक चुके हैं कि आप इतनी यंग कैसे दिखते हैं, but I really would like to know, आपको खाने में क्या पसंद है?
3: जैसे मैं क्या, मैं हर चीज खाता हूँ, but I love all kinds of food. I love Japanese food, Chinese food, Indian food, North Indian food, South Indian food, और Gujarati food. Sometimes I love Thai food, Mexican food. खाने में I'm not fussy about food. दिल से प्यार से अगर कोई बना के दे तो मुझे अच्छा लगता है.
2: आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
0: Bollywood Bolda. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
5: अरे भट्ट हूँ.
6: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है.
5: खट खट हू दैट.
7: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट. मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.
2: वेल, इट्स टाइम के गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग के मैसेजेस यहाँ पर पढ़े जाए. आफरीन जुड़ गई है आपके साथ. हाँ जी, रॉबर्ट डिसोजा मुंबई से कहते हैं वेरी गुड मॉर्निंग. उसके अलावा यहाँ मैसेज आया है हरपाल संधू का, दैट गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप योर डे फ्लोज इजिली, योर माइंड स्टेज क्वाइट एंड योर हार्ट फील्स फुल. हरपाल संधू, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू. और नाजनीन जी का गुड मॉर्निंग है. उसके अलावा बड़े मजे का गुड मॉर्निंग मैसेज है यहाँ पर, वो मैं बताती हूँ आपको कि गुड मॉर्निंग आर जी आफरीन, योर मॉर्निंग शो इज बेटर दैन अ डबल शॉट ऑफ एक्सप्रेसो. कहाँ से लाते हो भाई ये सारे मैसेजेस? और बड़ी अच्छे गाने की यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है की, saying that फुकरे रिटर्न का इश्क दे फनियार. ओके, कमिंग दैट सॉन्ग योर वे नेक्स्ट. मीनवाइल मनोज का भी यहाँ पे गुड मॉर्निंग मैसेज आ गया है और बड़ा ही अच्छा गुड मॉर्निंग. अरे यार, कॉर्निश का फोटो भेज रहे हो आप, इतना खूबसूरत सा लग रहा है. ब्यूटिफुल यार, आई थिंक सो ही इज ड्राइविंग टुवर्ड्स वेस्ट बे और कॉर्निश की तरफ से इन्होंने ये फोटो भेजा है. यार सीरियसली, अगर आप ऐसे कॉर्निश या कतर की कोई ऐसी खूबसूरत जगह की तरफ से सुबह सुबह निकलते हो तो एक फोटो भेज दिया करो मुझे. मैं यहाँ बैठे बैठे स्टूडियो में सुबह का कतर कैसा दिखता है वो देख पाऊंगी. 5000 1896 मीनवाइल इज माई नंबर. और जैसे इमरान ने रिक्वेस्ट की थी ये गाने की फुकरे रिटर्न से,
8: इश्क दे फनियार लड़ गए मेरी जान के पीछे.
2: ज्योति का टंगरी की आवाज में ये गाना प्लेइंग नेक्स्ट फॉर यू ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

Well, देखिए अगर मैं कहूँ कि मुझे इन गानों से मोहब्बत है तो आप भी यही कहोगे। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफरीन है आपके साथ राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और दिल ना जाने क्यों ना घूम फिर कर फिर से 90s के गानों की तरफ ना हमेशा दौड़ भागता है। 90s हो या फिर अर्ली 2000 हो, लक्ष्य मूवी का ये गाना तो आपने अभी सुना। लेकिन टॉकिंग अबाउट 90s का एरा, किसी लिसनर ने मुझे पूछा था कि हम 90s के गाने क्यों इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं वजह बताऊँ, वो कुछ ऐसी है कि हमारे जो लाइफ के गुड मोमेंट्स हैं वो ना हमारे बचपन से जुड़ी हुई है, वो एरा से जुड़ी हुई है जो हमने जिया है विदाउट एनी स्ट्रेस। एंड सभी के लिए लगभग वो 90s का एरा है, 2000 अर्ली 2000 का एरा है या लेट 80s का एरा है, एटलीस्ट फॉर द मिलेनियल्स आई एम टॉकिंग अबाउट, जिन्हें ये एरा बहुत पसंद है और ये गाने बहुत पसंद है। और जब हम ये गाने सुनते हैं ना, इट ब्रिंग्स बैक ऑल दोज ब्यूटिफुल मेमोरीज वॉट वी हैव लिव्ड। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक सो द लव ऑफ 90s songs is just common in everyone। अब जहाँ 90s की बात आई है, इस गानों को हमें जब मौका मिलेगा लाइव रीलिव करने का तो हाउ इट वुड बी। सो वेल, 30th of October इज द डेट जहाँ रामी प्रोडक्शन लेकर आ रहे हैं दिस ब्यूटीफुल बॉलीवुड मेगा नाइट, जहाँ अनुराधा पौडवाल खुद होने वाली है, विनोद राठौड़ खुद होने वाले हैं और साथ ही साथ जूनियर कुमार सानू भी रहने वाले हैं। सो यस, बस आई एम जस्ट एक्साइटेड कि कितने खूबसूरत से गाने होंगे और क्या मतलब वो मजा आएगा कि यार ऐसे गाने जो हम साथ साथ गाएंगे भी, क्योंकि हमें पूरे गाने ये याद है, राइट। सो बस क्या करना है आपने, क्यू टिकट्स पर जाना है, प्लैटिनम लिस्ट पर जाइए, एस सिटी पर जाइए, जस्ट नेम इट एंड यू आर गोना गेट द टिकट्स एवरीवेयर। और मजे की बात बताऊं, मैं मेरे शो पर आज लकी विनर्स भी बनाने वाली हूं जो ये टिकट्स जीतने वाले हैं। सो यू गॉट टू स्टे ट्यून विद मी, दैट इज सिंपली आफरीन राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगला गाना कुमार सानू की आवाज में, वन ऑफ माय फेवरेट रोमांटिक ट्रैक्स। Enjoy this track on Mitchell's Hot.

0: Mirchi. Iskabala, puskabala, sakabala. Rambala. Murga, murga. La virpa la murga. Mirchi, murga.
1: हेलो
2: आकाश
1: जी।
2: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
1: हाँ, बिल्कुल।
2: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
1: मेरी गर्लफ्रेंड है।
2: ओहो, यही मिली है आपको?
1: जी, बहुत पंगे लेती है।
2: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
1: ठीक है।
2: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
1: आकाश मल्होत्रा।
2: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे,
1: राइट? बिल्कुल।
2: चलिए, अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ। मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड
1: पूजा
2: पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा, ठीक है?
1: जी, डेफिनेटली।
2: ओके। अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
1: अच्छा।
2: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
1: क्या कह रहे हैं?
2: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
1: क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सब भी होता है?
2: नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली हैं, तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, अब आप मजे लीजिएगा, है ना?
1: सर मेरी बात तो सुनिए।
2: हाँ बताइए।
1: फन की बात अलग है, लेकिन वो उसको सीरियसली गुस्सा आ गया। और
2: अरे मेरी बात तो सुनिए, गुस्सा आपको आज
1: मैं तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
2: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
1: जी,
2: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ुकू। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारे मुर्गा बन गया।
1: मेरा बन गया वो कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट। मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मिल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मिल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
4: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
5: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
4: This initiative is driven by GWM.
5: Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 5509389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
6: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
7: शॉपिंग करो लूलू में और बिल हो सकता है बिल्कुल फ्री। जी हाँ, लूलू हाइपरमार्केट लेकर आया है लूलू 2026 फ्री ट्रॉलीज। विन वन ऑफ 2026 फ्री ट्रॉलीज और जीतने के लिए बस फॉलो करो 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, शॉप लूलू हाइपरमार्केट के किसी भी ब्रांच के सुपरमार्केट सेक्शन में जाओ और शॉपिंग करो। स्टेप 2, स्टे ट्यून्ड, चेकआउट काउंटर पर ऑटोमेटेड सिस्टम रैंडमली सिलेक्ट करेगा लकी विनर। स्टेप 3, विन। अगर बिलिंग के टाइम आप सिलेक्ट हो गए तो आपका पूरा शॉपिंग बिल फ्री। तो देर किस बात की, शॉपिंग करो लूलू में, लूलू हाइपरमार्केट। शॉप करो, चांस पाओ और ट्रॉली भर शॉपिंग फ्री में ले जाओ। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
8: Hi, this is Anuradha Podwal. I'm coming to perform in your city.
9: Yara, oh yara, milna hamara. this is Vinod Rathore and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
10: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 p.m. onwards. In association with Lulu Hypermarket, iPay, Indomie Noodles, Green Printers, tickets available at all Lulu Hypermarket outlets. Online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6000-4369 and event by Rami Productions International.
11: Cut, cut.
12: Who that?
11: Jassi.
12: Jassi? Kaunsi wali Jassi?
11: Jassi who has come, Auntie Ji?
12: Cut, cut. Who that?
13: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: वेल देखिए, मौसम कमाल तो होगा एक तरफ, लेकिन ये दूसरी टेंशन है वो जरूर अब थोड़ा सा आपको महसूस होगा। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और कतर में जब भी हमारा मौसम बदलता है ना, तो साथ एक चीज लाता है और वो है सीजनल फ्लू। और घर में किसी को एक को फ्लू हो जाए तो खलास, फिर सारे बाकी के फैमिली मेम्बर्स को धीरे धीरे से वो शुरू हो ही जाता है। वेल इसी से रिलेटेड कतर की प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन यानी हमारी PHCC की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है।
1: क्या खबर कदर?
0: खबर कुछ ऐसी है दैट PHCC कदर के 31 हेल्थ सेंटर्स में फ्री सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहा है। और ये वैक्सीन एडल्ट्स के साथ 6 मंथ्स और उसके अबाव एज के चिल्ड्रन के लिए भी अवेलेबल है। अब डॉक्टर्स पर्टिकुलरली रिकमेंड करते हैं कि यंग चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल, प्रेग्नेंट वुमेन और क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन वाले इंडिविजुअल्स जो है एनुअल फ्लू वैक्सीनेशन को सीरियसली कंसिडर करें, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस हर सीजन चेंज हो सकता है, इसलिए वैक्सीनेशन एनुअली रिकमेंड की जाती है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात यह है दैट फ्लू वैक्सीन इलनेस की सिवियरिटी और कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क रिड्यूस करने में हेल्प जरूर कर सकती है। तो अगर आपने इस सीजन का फ्लू वैक्सीन अभी तक नहीं लिया है तो अपने PHCC हेल्थ सेंटर से वैक्सीनेशन अरेंजमेंट्स चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना इलनेस के बाद रिकवरी में कई दिन लग जाते हैं, इससे बेहतर हो सकता है। राइट, माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगला खाना आपकी तरफ आ रहा है, और मिर्ची के साथ।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen. Beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: Huh? Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
9: Yes, Bebo.
8: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
9: Yes.
8: Catch kya hai?
9: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
8: I still can't believe it. No catch.
9: Catches sirf matches mein hote hain, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
10: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
11: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cashback.
12: Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
10: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
13: Hi, this is Anuradha Podwal. I'm coming to perform in your city.
14: Yara, oh yara, milna hamara.
15: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
16: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 p.m. onwards. In association with Lulu Hypermarket, iPay, Indomie Noodles, Green Printers, tickets available at all Lulu Hypermarket outlets. Online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6004369 and event by Rami Productions International.
17: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
0: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
18: जबरदस्त ट्रैक्स।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
19: 89.6
6: FM, मिर्ची वन,
3: इट्स हॉट।
0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
13: बॉलीवुड पोर्टल,
5: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
4: Only on Mirchi, it's hot.
10: देखिए कौशल, आपको देख के लगता नहीं है आप किसी चीज से डरते होंगे, डर लगता है आपको?
8: पानी के अलावा सांपों से बड़ा डर लगता है, डर से ज्यादा रिपल्स हो जाता हूँ, मुझे एकदम वही झंझरी सी मच जाती है एकदम शरीर में।
10: जैसे झंझरी बोला ऐसे मुझे अचानक से वो सेंसिटिव टूथपेस्ट झंझनाहट। You're listening to Mirchi, it's hot.
13: Bollywood, Bolda.
5: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
4: Only on Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल, सुलझाने तो वाले हो आप अगले ये पहेली को। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। हाँ जी, मिर्ची मॉर्निंग्स पर स्वागत है आपका। और आफरीन जो है हर रोज की तरह इस वक्त पर सवाल लेकर आई है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पता है दे वेट के आज आफरीन क्या पूछेगी और हम सवाल का जवाब देंगे। इनफैक्ट लोग ऑलरेडी अपना व्हाट्सएप मैसेज खोलकर बैठ गए हैं 5000186। सो वेल, इंतजार किस बात का, फिर ये लीजिए लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट का आज का सवाल सुन लीजिए और बताइए कौन सी मूवी का ये सीन है।
0: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट।
2: रात के 11 बजे कहाँ जा रही हो तुम?
3: मुझे आइसक्रीम खानी है।
2: हाँ, नो प्रॉब्लम। या आइसक्रीम?
3: नहीं, मुझे बेन एंड जेरीज बेल्जियन डार्क चॉकलेट आइसक्रीम खानी है।
2: अरे आई थॉट तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम नहीं पसंद है।
3: डैम इट निक, तुम नहीं समझोगे। प्रेगनेंसी में ऐसे होता है, जब किसी चीज की क्रेविंग होती है तो फिर और कुछ समझ में नहीं आता। एंड राइट नाउ ऑल आई कैन थिंक ऑफ इज बेन एंड जेरीज बेल्जियन डार्क चॉकलेट आइसक्रीम।
2: ओके ओके, कल ले आना भाई।
3: नहीं नहीं, मुझे अभी खानी है, तुम्हें क्या तुम
1: जाने? अरे भाई, इतनी आइसक्रीम खाने ये खानी है, मुझे भी मन कर गया इधर आइसक्रीम खाने का। यहाँ पर सुबह से नाश्ता नसीब नहीं हुआ है, आइसक्रीम की कहाँ बात करें। फिलहाल यहाँ पर जवाब की बात करते हैं। अगर आपने पकड़ लिया ये कौन सी मूवी है, देन 5000186 इज द नंबर, व्हाट्सएप नंबर है मेरा। यहाँ पर आके वॉइस मैसेज भेजोगे तो मजा आ जाएगा, कोई बात नहीं टेक्स्ट मैसेज भेजोगे तो भी चलेगा। मीनवाइल आपके जवाब का इंतजार मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आप अगला गाना एंजॉय कीजिएगा जुबिन नौटियाल की आवाज में। ये गाना एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Well, Neeraj Sridhar, Raman Parvez, so many people singing this track from the movie Hey Baby, title track. और मुझे ये movie का जब भी मैं कोई गाना सुनती हूँ ना, मुझे वो प्यारी सी छोटी सी गुड़िया याद आती है. बहुत प्यारी सी movie थी ये. वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग. आफरीन आ गई है, गेम लेकर आई है. इनफैक्ट सीन का मैंने सब कुछ सुना दिया था, आपने बहुत सारे आंसर्स भी दिए, लेकिन लोग अभी भी तो जुड़े हैं हमारे साथ, तो उनको भी तो सीन सुना दें. यहाँ पर मूवी का सीन सुना रही हूँ, आपने गेस करना है कौन सी मूवी से है. 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर. एज इजी एज दिस.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट सीन टेस्ट.
2: रात के 11 बजे कहाँ जा रही हो तुम?
3: मुझे आइसक्रीम खानी है.
2: नो प्रॉब्लम. आइसक्रीम?
3: नहीं, मुझे बेन एंड जेरीज बेल्जियन डार्क चॉकलेट आइसक्रीम खानी है.
2: अरे यार, थोड़ा तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम नहीं पसंद है?
3: डैम इट निक, तुम नहीं समझोगे. प्रेगनेंसी में ऐसे होता है, जब किसी चीज की क्रेविंग होती है तो फिर और कुछ समझ में नहीं आता. एंड राइट नाउ ऑल आई कैन थिंक,
0: ऑलराइट, इतनी आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम कर रही है. कौन है ये एक्ट्रेस? बहुत सारे मैसेजेस आए हैं यहाँ पर, चलिए सुनते हैं उन्हें.
4: हाय आफरीन.
0: हेलो.
4: मूवी नेम इज सलाम नमस्ते.
0: ऑलराइट.
4: सैफ अली खान एंड प्रीति जिंटा.
0: ओके.
4: एंड दिस इज नितिन.
0: ऑलराइट नितिन. हे, हां जी नदीम.
5: सलाम नमस्ते है.
0: ओके. यस मनाली. दैट इज एब्सोल्युटली राइट, इट इज सलाम नमस्ते. इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है यहाँ पर. अतुल सक्सेना, मोहसिन, देन आई हैव योर हरपाल संधू, देन आई हैव योर इलियास, इफ आई एम राइट, नाम तो लिखा नहीं है. देन मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज है. संजीवा, विजय लक्ष्मी, रवि. रवि तुमने वॉइस मैसेज भी भेजा था अभी, मैंने देखा, आई एम सो सॉरी. देन आई हैव धीरज और मिस राना, मृगेश, खयाम अख्तर, हम तुम कहते हैं लेकिन ये हम तुम नहीं है, उपेंद्र शर्मा, फराज, सलमान. माय गॉड, आई हैव गॉट सो मेनी मैसेजेस टुडे. अब्दुल रहमान एंड द लिस्ट इज लॉन्ग. अख्तर, और यस, बहुत बड़ी लिस्ट है. सो यस, सलाम नमस्ते इज द राइट आंसर. और इसी के साथ ये जो सिचुएशन था यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, इनफैक्ट ये पूरी मूवी शूट की गई थी, सलाम नमस्ते मूवी, जिसमें प्रीति जिंटा थे, सैफ अली खान था. वो सैफ अली खान का वो दौर था जहाँ पर इस टाइप की मूवीज उनकी बहुत आ रही थी, मतलब वो सिमिलर काइंड ऑफ रोल्स प्ले कर रहे थे. हम तुम में है, तारा, सलाम नमस्ते, दैट वो एक कैरेक्टर कहता है ना, वो एक ही कैरेक्टर में अटक गए थे सैफ अली खान, आई थिंक सो. विद दिस, ये जो सीन आपने अभी सुना उसके तुरंत बाद एक गाना बजता है, और वो कौन सा गाना है? कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाज में व्हाट्स गोइंग ऑन. आप बताओ व्हाट्स गोइंग ऑन योर वीकेंड, क्या प्लान है? माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: यार रमन की आवाज में रंग दे बसंती का ये गाना, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग इट इज। मतलब एक ऐसा वाइब देता है ना ये गाना, ऑफ कोर्स यंग वाइब तो देता ही है लेकिन बड़ा जोशीला वाइब देता है ना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आफरीन है आपके साथ, एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ। ऑब्वियसली वीकेंड है, वीकेंड की एक अलग खुशी होती है यार। और वो मैं क्या, वो आप भी समझते हो कि कितने दिन से आपका इंतजार रहता है कि ये दो दिन आएंगे। किसी के लिए एक दिन का होता है, किसी के लिए दो दिन का होता है, लेकिन यार जो खुद के लिए जब वक्त मिलता है ना, तब उसे अच्छे से इस्तेमाल करो। फिलहाल तो कुछ इंपॉर्टेंट अगर काम और डिसीजन है तो फिर ये रेट सुन लीजिए और वो भी ले सकते हैं आप वीकेंड पर। गोल्ड अपडेट। सो वेल, आज की गोल्ड रेट्स क्या कहते हैं, दैट 1 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 565 कस्टोडियल, वेयर एज 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2643 कस्टोडियल। 10 ग्राम गोल्ड बार की बात करूं तो 5217 कस्टोडियल है। 1 औंस गोल्ड बार इज फॉर 16124 कस्टोडियल एंड 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 59854 कस्टोडियल। ये थे आज के गोल्ड रेट्स। सो बस अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाज में, फ्रॉम द मूवी तमाशा, अ वेरी फील गुड वाला गाना। On which it's hot.
1: Stay ahead of today's gold rates with Alpardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
2: and earn Qatar Airways Avios today.
1: Visit our branches or download the app now.

0: Milci. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virgua, la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hello, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
1: किसके यहाँ से?
2: स्वर्गीय अनिल चौहान.
1: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
2: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब. मैं बोल रहा हूँ
1: अनिल ही बोल रहा हूँ. स्वर्गीय नहीं हूँ मैं, जिंदा हूँ.
2: सर स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है. सर मैं से बोल रहा हूँ पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से. तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए.
1: दिमाग खराब है तेरा? अबे मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम.
2: सर आप ये बेवकूफी की बात ना करें. आप एक तो जुबान संभाल के बात करें. मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ. आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने. आपकी रिपोर्ट आ गई है सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट.
1: स्वर्गीय नहीं, तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है.
2: स्वर्गीय अनिल चौहान यार, आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ.
1: स्वर्गीय अनिल चौहान मैं जिंदा हूँ भाई. घर परिवार वाले में तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
2: कौन पागल हो गया? आपकी पोस्टमार्टम, मेरी बात सुन लीजिए आप. मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया. स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई. बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने. दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आगे पोस्टमार्टम करा लो. एक ही रिपोर्ट है दोनों की.
1: डॉक्टर बोल लो तुम.
2: मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार. मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका.
1: ऐसा
2: केस हम क्या करेंगे? केस तो मैं उन पे करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे. वो बाप बनने वाले.
1: परिवार वाले आदमी से ऐसी बात करता है? कौन है तेरी
2: बेवकूफी की बात मत करिए. आप आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके. पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं.
1: जी
2: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से? मेरी बात सुनिए. आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है. अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक किया है. आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें.
1: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं.
2: सर मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है. अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट,
4: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ. डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस. सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं.
5: GWM के मिर्ची रिचार्ज में आइडियल इंडियन स्कूल के बच्चों ने की ढेर सारी मस्ती एंड फन. लेट्स हियर इट फ्रॉम देम.
6: 89.6 मिर्ची वन से मैं हूँ आरजे मस्वाला गौरव, और मैं आया हूँ आज आइडियल इंडियन स्कूल में, और मेरे साथ ढेर सारे बच्चे हैं. यू गाइस एंजॉयड इट?
7: It was great fun. Thank you, Mirchi. Thank you, GWM.
8: Thank you, Mirchi, for the GWM recharge. It was really fun, especially the magic show.
9: And show Gaurav, Afreen, thank you very much.
10: Huh? Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
11: Yes, Bebo.
10: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
11: Yes.
10: Catch kya hai?
11: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
10: I still can't believe it. No catch.
11: Catches.

लता जी और सोनू निगम की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। और अगर आप ये नोटिस किए हो या पता नहीं, लेकिन इस गाने के दौरान लता जी की एज वाज आई थिंक सो पास 60 ओनली, काफी सीनियर आवाज थी। एंड ऑन दी अदर साइड सोनू निगम बहुत ही यंग फ्रेश आवाज थी उनकी इन द इंडस्ट्री, लेकिन फिर भी गाना कितना खूबसूरत लग रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और जहाँ पर ये खूबसूरत मॉर्निंग में ये वीकेंड वाली मॉर्निंग ना थोड़ी सी खास ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमें ना बहुत सारे काम करने का भी ध्यान आता है। तो जैसे अगर एक्सचेंज रेट अच्छे अभी मिल रहे हैं तो फिर किस चीज़ की देरी है। हाँ जी, देरी मत कीजिए, फटाफट से पैसे भेज दीजिए। जहाँ पर एक कचड़ियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.01, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज जो है 76.10 पर है। बांग्लादेशी टाका की बात करें तो 33.86 पर है। श्रीलंकन रुपीज जो है एक कचड़ियाल के बदले आपको मिल रहे हैं 90.88, वहीं नेपाली रुपीज इज एट 41.60। ये थी आज की एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां एंड खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला, वन एंड ओनली 89.6 मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है।

0: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Well, that was Sunidhi ki awaaz mein ye gaana right here on Mirchi, and I am all charged to mere agle sawal ke saath. क्योंकि ये सवाल आपका फायदा जरूर कर सकता है. और वो कैसे? क्योंकि मैं यहाँ पर दे रही हूँ रामी प्रोडक्शन का इवेंट जो आ रहा है 30th October को, जहाँ अनुराधा पौडवाल होगी, विनोद राठौड़ होने वाले हैं, एंड देन जूनियर कुमार सानो, एंड बहुत सारा 90s का नॉस्टैल्जिया होने वाला है. इस शो की टिकट यहाँ पर इस कॉन्टेस्ट में मैं दे रही हूँ टू वन लकी विनर. वो कौन होगा ये तो आप ही जानते हो. ये आप जब जवाब दोगे तभी तो सिलेक्ट होगा. सो वेल, विद दिस मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स खेलने का वक्त हो गया है. ऑलराइट, मेरे मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में से आज चार एक्टर्स के नाम निकले हैं. नो, यू डोंट हैव टू टेल मी द मूवी नेम, बट यू हैव टू टेल मी इन असेंडिंग ऑर्डर के ये जो एक्टर्स हैं कौन पहले एंट्री किया है बॉलीवुड में, कौन लास्ट. सो इन द असेंडिंग ऑर्डर यू हैव टू अरेंज देम. द फोर एक्टर्स आर अक्षय कुमार, सनी देओल, संजय दत्त एंड अजय देवगन. बताओ, अक्षय कुमार, सनी देओल, संजय दत्त एंड अजय देवगन, कौन बॉलीवुड में पहले एंट्री किया है, किसकी मूवी पहले आई है, किसकी लास्ट में रिलीज हुई है, आई मीन द डेब्यू मूवी की बात कर रही हूँ मैं. तो बताइए मुझे फटाफट से 5000 1896. आपको बताना है कि इन चार एक्टर्स यानी अक्षय कुमार, सनी देओल, संजय दत्त और अजय देवगन में से अपना डेब्यू किस ऑर्डर में किया था, सबसे पहले कौन आया था, सबसे लास्ट में किसने एंट्री मारी थी. चलिए देखते हैं आपकी बॉलीवुड की नॉलेज कितनी स्ट्रांग है और यहाँ पर कौन आज की पासेस जीतता है. तब तक के लिए अगला गाना एंजॉय कीजिएगा. वेल, दैट इज विद विशाल ददलानी, अलाइसा मेंडोसा की आवाज में ये गाना ऑन द शीट्स.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कुणाल खेमू, अपने कॉलेज डेज में आपने सबसे बढ़िया जुगाड़ कौन सा किया?
3: हम लोग थिएटर जब करते थे कॉलेज में, ये तो नॉर्मल जिंदगी थी उस वक्त, लिमिटेड पॉकेट मनी होती थी, चल चल के पैसे बचाए जाते थे, रिक्शे के कैसे शेयरिंग में कभी किसी को धोखा देके भाग लेते थे।
2: कुणाल खेमू वो इंसान आज भी आपके पीछे भाग रहा है। व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। आप सुन रहे मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: GWM के मिर्ची रिचार्ज में आइडियल इंडियन स्कूल के बच्चों ने की ढेर सारी मस्ती एंड फन। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
5: 89.6 मिर्ची वन से मैं हूँ आरजे मस्वाला गौरव और मैं आया हूँ आज आइडियल इंडियन स्कूल में और मेरे साथ ढेर सारे बच्चे हैं। यू गाइस एंजॉयड इट?
6: It was great fun. Thank you, Mirchi. Thank you, GWM.
7: Thank you, Mirchi, for the GWM recharge. It was really fun, especially the magic show.
8: And show Gaurav, Afin, thank you very much.
9: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also, enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
10: शॉपिंग करो लूलू में और बिल हो सकता है बिल्कुल फ्री। जी हाँ, लूलू हाइपरमार्केट लेकर आया है लूलू 2026 फ्री ट्रॉलीज। विन वन ऑफ 2026 फ्री ट्रॉलीज और जीतने के लिए बस फॉलो करो थ्री सिंपल स्टेप्स। स्टेप वन, शॉप लूलू हाइपरमार्केट के किसी भी ब्रांच के सुपरमार्केट सेक्शन में जाओ और शॉपिंग करो। स्टेप टू, स्टे ट्यून्ड, चेकआउट काउंटर पर ऑटोमेटेड सिस्टम रैंडमली सिलेक्ट करेगा लकी विनर। स्टेप थ्री, विन। अगर बिलिंग के टाइम आप सिलेक्ट हो गए तो आपका पूरा शॉपिंग बिल फ्री। तो देर किस बात की, शॉपिंग करो लूलू में लूलू हाइपरमार्केट। शॉप करो, चांस पाओ और ट्रॉली भर शॉपिंग फ्री में ले जाओ। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
11: मैं दुनिया बुला दूंगी।
12: हाय, दिस इज अनुराधा पौडवाल। आई एम कमिंग टू परफॉर्म इन योर सिटी।
13: चाहत ना होती, कुछ भी ना होता।
14: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
15: Ye kali kali aankhein.
9: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 PM onwards. In association with Lulu Hypermarket, iPay, Indomie Noodles, Green Printers, tickets available at all Lulu Hypermarket outlets. Online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6004369 and event by Rami Productions International.
16: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
17: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
18: 89.6
19: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Well, बात तो सही है, राहें आपकी ना मेरे साथ जुड़ी हुई है, जहाँ जहाँ आप सफर कर रहे हो, जो जो गलियों में गुजर रहे हो, साथ तो मेरा है ही ना आपके साथ। और यहाँ सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था माई फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, आपने जवाब देना था। वेल, कौन सा सवाल है मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में से निकला जो है? सुवेल, चार एक्टर्स के नाम बताए थे और सही क्रम में आपको उसे अरेंज करना था इन द ऑर्डर ऑफ देयर डेब्यू मूवी, द फर्स्ट एंट्री इन बॉलीवुड। कौन से एक्टर की पहले हुई, कौन से एक्टर की बाद हुई, फिर उसके बाद कौन से एक्टर की हुई। तो चार नाम कुछ ऐसे थे, जहां मैंने बताया था अक्षय कुमार है, सनी देओल है, संजय दत्त है एंड अजय देवगन है। ये सारे नाम मैंने आपको बताए थे, अक्षय कुमार, सनी देओल, संजय दत्त एंड अजय देवगन। बहुत सारे आंसर्स आए हैं यहाँ पर, चलिए सुना देती हूँ आपको।
1: Hi, I friend.
0: Hello,
1: How are
0: जी. बिल्कुल बढ़िया.
1: So, as per your question, Sanjay Dutt was the first to debut in 1981, and then Sunny Deol, Akshay Kumar, and Ajay Devgan.
2: Okay. Correct order is. सबसे पहले movie थी Sanjay Dutt की Rocky, उसके बाद I think Sunny Deol की, फिर Akshay Kumar की, और सबसे last में जो debut किया था वो था Ajay Devgan.
3: Have a great day, thank you. Bye.
4: Hi, friend. I am Rakesh here. फर्स्ट संजय दत्त 1981 में रॉकी फिल्म, सेकंड सनी देओल बेताल 1983 में, थर्ड अक्षय कुमार सौगंध, और फोर्थ अजय देवगन फुल और कैटे 1991।
0: ओके ओके, ऑलराइट।
5: द एक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम देयर डेब्यूट इट्स सनी देओल, संजय दत्त,
0: हां जी,
5: अक्षय कुमार एंड
0: राइट। ओके विवेक, बहुत सारे आंसर्स यहाँ पर आए हैं, कुछ सही कुछ गलत, और इन सभी के बीच में डेफिनेटली विनर तो एक ही हो सकता है। तो आज के जो विनर का नाम है दैट इज प्रवीण। प्रवीण ने सारे जवाब बिल्कुल सही दिए, इनफैक्ट बहुत लोगों ने किए हैं यहाँ पर मैसेज। नदीम का भी मैसेज आया है, नवेद का भी मैसेज आया है, बिल्कुल सही है नवेद तुम्हारा मैसेज, लेकिन बस आज के लकी विनर यहाँ पर प्रवीण है। कल फिर से हमारे साथ आप खेलेंगे तो आप फिर से जीतने का मौका मिलेगा आपको। 30 अक्टूबर रामी प्रोडक्शन की तरफ से जो इवेंट आ रहा है बॉलीवुड मेगा नाइट, जहां अनुराधा पौडवाल होगी, विनोद राठौड़ होंगे, जूनियर कुमार सानू होंगे, मतलब एक वर्ड में बताऊं तो सिर्फ 90s नॉस्टैल्जिया वुड हिट यू सो हार्ड ऑन दैट डे। सो इसी के साथ 90s नॉस्टैल्जिया का तो तड़का जो है वो हम यहां पर भी तो दे ही सकते हैं। आई एम सो श्योर ये गाना उस दिन जरूर गाएंगे ये लोग, और साथ साथ हम भी गाएंगे, तो चलो थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में ये गाना ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

करण सैभी की आवाज में ये गाना राइटर और मिर्ची आफरीन है आपके साथ। और बदले मौसम के साथ साथ हमारा वीकेंड आ गया है। प्रोबेबली वीकेंड से कि ये पहला वीकेंड है जहां पर मौसम थोड़ा सा मेहरबान हुआ है। अब वो भी मैं बता देती हूँ क्लियरली। अब ये नहीं बोलना कि यार आफरीन तुम कह रही हो अच्छा हो गया, कहाँ अच्छा हुआ, शाम के वक्त की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। वीकेंड पर 5 बजे के बाद, 4 बजे के बाद, मगरिब बाद आप निकलोगे तो अच्छा ही लगेगा। अब कहाँ जाओगे, दैट इज अ पॉइंट। सो मैं बता दूँ कतर में क्या क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है। एक तो है उन लोगों के लिए जिनको एड्रेनलाइन रश होता है और जिनको वो थ्रिल और पावरफुल कार्स, हाई एनर्जी, एंटरटेनमेंट, ये सब कुछ पसंद है, देन द आई थिंक सो ड्रिफ्ट शो एट मॉल ऑफ कतर इज द प्लेस। अब अगर आपको ये खुद एक्सपीरियंस करना है ना, वेस्ट गेट 2 के पास से पहले बता दूं ये, और 5 बजे से लेकर 9 बजे तक है, 31 अक्टूबर तक ये चलने वाला है, 28 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर, वेल ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकेंड की बात है वैसे तो, बट इसकी जो है टिकट्स आर देयर ऑन द वेबसाइट्स। और मजे की बात ये है वहां पर गाड़ियां ऑन ड्रिफ्ट होगी, बड़ा ही एक्शन बेस्ड होगा, एंड यू वांट एक्सपीरियंस तो आप 350 रियाल्स देकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं खुद अंदर बैठकर गाड़ी के। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो सिर्फ, तो दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, वहां खड़े रहकर आप जरूर देख सकते हैं ये सारी गाड़ियां किस तरह से ड्रिफ्ट हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वीकेंड पर जो है, दिस वीकेंड ऑल्सो यहां पर फुवेरत काइट बीच, इधर पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज चल रही है। ये फैमिली बेस्ड है, बीच पर हर बच्चे के लिए, हर फैमिली मेंबर के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जनरल एंट्री जो है 15 कतरी रियाल की है, सो यहाँ पर भी आप ज़रूर जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, मौसम थोड़ा सा साथ दे रहा है तो थोड़ा बाहर एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड ऑफकोर्स हमारे मौसम की मेहरबानी तो है ही, लेकिन हमारे कतर में लगे हुए इतने आउटडोर एसीज की भी मेहरबानी है। कतारा की तरफ चले जाइए, लुसेल की तरफ चले जाइए, प्लेस वेंडम का जो आउटसाइड का एरिया है वहां पर भी एसी लगे हैं, गिवान आइलैंड की तरफ एसी लगे हैं। वाओ यार, आई लव कतर सो मच। हैविंग सेड दैट, अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ऐसा मैं नहीं, शर्मली खोलगड़े की भी आवाज में। नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। अगला गाना है फ्रॉम द मूवी अशोक ज़ादे, एंड आई लव दिस एक्ट्रेस, एंड यू नो व्हाई। एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: किसी ने सच ही कहा है कि टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती है और क्रिएटिविटी को चाहिए बस एक मौका, एक प्लेटफॉर्म। और कतर में रहने वाले हमारे यंग टैलेंट्स को मिल रहा है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कलांजलि 2026। जी हाँ, कतर इंडियन स्कूल यूथ फेस्टिवल, जहां बच्चे और यंगस्टर्स अपना टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी और अपने हुनर का कमाल दिखाने वाले हैं। भले वो डांस हो, म्यूजिक हो, आर्ट हो या कल्चरल परफॉर्मेंसेस, यहां आपको नजर आएगा टैलेंट का एक खूबसूरत सेलिब्रेशन। 16th, 17th और फिर 23rd से लेकर 30th अक्टूबर तक वेन्यू है आइडल इंडियन स्कूल अबूहमूर। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री। तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर पहुंच जाइएगा, क्योंकि जब हमारे यंग टैलेंट स्टेज पर आते हैं ना, तो उन्हें सिर्फ अप्लॉज नहीं, हमारा एंकरेजमेंट भी चाहिए होता है। सो मार्क योर डेट्स एंड बी देयर टू चीयर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ टैलेंट एट कलांजलि 2026। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ।

0: वो बटरफ्लाइज इन स्टमक वाली फीलिंग लास्ट कब आई थी आपको? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आफरीन है आपके साथ राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग. और मेरे ख्याल से वो कॉलेज का वक्त हुआ करता था, पहला प्यार, जब किसी से मिलने का बड़ा इंतजार हुआ करता था और जब वो सामने आ जाए तो समझ नहीं आता था ना क्या करें. मतलब पहले से कितनी हम प्लानिंग करते थे, ये बात करेंगे, ये करेंगे. मतलब आई एम जस्ट टेकिंग यू बैक इन दिस ओल्ड डेज एंड प्रॉबेबली अभी भी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा. और फिर सामने आपका वो मनपसंद इंसान जब आ जाता है ना तो बस सारी बोलती बंद है ना. ऐसे सिचुएशन में कभी आए हो आप? तो बस यही सिचुएशन पर आज आफरीन की शायरी है.
1: आफरीन की डायरी से शायरी. शायरी
0: जो अर्ज किया है कि वो सामने थे और हम पलक उठा ना सके. वो सामने थे और हम पलक उठा ना सके. चाहते थे पर पास उनके जा ना सके. ना देख ले वो अपनी तस्वीर हमारी आंखों में. ना देख ले वो अपनी तस्वीर हमारी आंखों में. बस यही सोचकर हम उनसे नजरें मिला ना सके.
2: जादू भरी आंखों वाली सुनो तुम ऐसे मुझे.
0: And then Bollywood has a song for all such situation ना. तो चलिए अगला गाना यही एंजॉय करते हैं उदित नारायण की आवाज में. माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सो अली खान, हमने सुना है कि सैफ एंड कुणाल बोथ आर ग्रेट कुक्स, आप क्या बना सकते हो?
3: थियोरी में तो मैं भी दाल चावल बना सकती हूँ, थियोरी में। कभी मतलब वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिला है, लाइक इट हैजंट गॉट दैट बैड कि मुझे किचन में जाने की जरूरत हुई है अब तक। कुणाल कुक्स वेरी वेल एंड भाई कैन मेक वेरी गुड स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड पास्ता।
2: दैट वाज सोआ अली खान ऑन बॉलीवुड बोल्डर। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Need to send money home? Make it fast, make it safe, make it Alphaban Exchange.
5: Your trusted choice for sending money, foreign currency exchange and gold bars and coins. Visit our nearest branch or download the Alphaban Exchange app now. For assistance, call or WhatsApp 4453-7777.
6: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
7: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
6: This initiative is driven by GWM.
8: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
9: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
10: बहुत कुछ होगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

Well, नीरज श्रीधर की आवाज और तुलसी कुमार का साथ राइट हियर ऑन मिर्ची आई लव मेरा हिट हिट और आपका वीकेंड भी बड़ा हिट हिट जाने वाला है. लेकिन ये जो खबर मैं लेकर आई हूँ अगली वो बहुत ही कमाल की है. एंड फॉर ऑल द इन्फ्लुएंसर्स आउट देयर, देख लो अपने फॉलोअर्स से कभी कुछ मांगने की गलती मत करना लाइक्स और फॉलोअर्स के अलावा. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन है आपके साथ और कहानी है तमिलनाडु की मदुराई में. एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है वीरामणि नाम का. अब इन्होंने क्या किया कि दिवाली के लिए फॉलोअर्स से एक मिठाई का डब्बा मांग लिया. अब ठीक है मिठाई का डब्बा ही तो मांगा है लेकिन साथ ही साथ अपना घर का एड्रेस और फोन नंबर भी शेयर कर दिया. फिर क्या था, मिठाई की जगह घर पहुंचने लगे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन, टेलीविजन. अब आप सोच रहे हो यार क्या लकी बंदा है. लेकिन सुनो जरा सबर करो कि ये सारे ऑर्डर्स जो तेरा वो कैश ऑन डिलीवरी पहुंचने लगे. मतलब ऑर्डर किसी और ने किया और पेमेंट इस इन्फ्लुएंसर को करना था. अब एक टेलीविजन जो पहुंचा था वो इनफैक्ट रिपोर्टेडली वॉज फॉर 1,69,000 रुपीज. लेकिन रुकिए पिक्चर अभी बाकी है. सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट ऐसा भी वायरल हो रहा है जिसमें 70 करोड़ का एक T-90 मिलिट्री टैंक ऑर्डर करने का क्लेम किया गया है. I mean, just imagine a military tank. अब टैंक ऑर्डर जेन्युइन नहीं था और कोई टैंक घर नहीं पहुंचा. लेकिन सोचिए मिठाई के एक डब्बे से बात मिलिट्री टैंक तक पहुंच गई. खैर मजाक इतना बढ़ गया कि वीरामणि को वीडियोस बनाकर लोगों से ऑर्डर्स बंद करने की बहुत गुजारिश करनी पड़ी एंड रिपोर्टेडली वो अपना घर छोड़कर चला गया. अब कितनी गजब की बात हो गई है. और इट्स अ रिमाइंडर कि सोशल मीडिया पर अपना पर्सनल एड्रेस शेयर करने से पहले जरूर सोचिए क्योंकि भाई मिठाई तो एक डब्बे में आ जाएगी लेकिन ये जो बाकी सारी चीजें हैं वो सब क्या. और इसी के साथ आप मुझे बताइए कि ये जो पूरा किस्सा था कि इट्स अ रिमाइंडर इन अ लाइट वेट, तो चलो ठीक है हंसी मजाक के हिसाब से हमने देख लिया लेकिन एक अपना एड्रेस फोन नंबर के साथ शेयर करना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता था. मीनवाइल चलिए मैं लेती हूँ अलविदा. ऐसे ही मजेदार बातें अगले हफ्ते जरूर लेकर आऊंगी. थर्सडे है मेरी, थर्सडे तो है जो मॉर्निंग है वो तो अभी महफिल ये रैप अप हो जाती है लेकिन आपका होने के लिए थोड़ा वक्त है. बस इसी के साथ कहती हूँ कि वीकेंड एंजॉय करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. संडे मॉर्निंग फिर से मिलेंगे मिर्ची मॉर्निंग्स में और लेना चाहूंगी आपसे इजाजत. तो इजाजत है चलिए माइक से दिल तक आप श्री ने आपके साथ ऑन मिर्ची. इट्स हॉट

0: यार क्या हर रिश्ते का एक नाम हो ये जरूरी है?
1: मिर्ची अंशु
0: कभी महसूस किया है कि कुछ लोग जिंदगी में आते तो बिना किसी नाम के हैं, पर दिल में उनकी जगह हर नाम से ज्यादा खास होती है। कभी सोचा है कि आखिर हम हर रिश्ते को एक नाम क्यों देना चाहते हैं, किसी दायरे में क्यों बांधना चाहते हैं? कभी दोस्ती, कभी मोहब्बत, कभी खून का रिश्ता, कभी अपनापन या कभी कुछ और। शायद कुछ रिश्ते इन सभी सवालों से बहुत ऊपर होते हैं, क्योंकि सबसे खास बात क्या है ना, इनमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती और शायद इनकी कोई डेफिनेशन भी नहीं होती। लेकिन हाँ, इनमें एक चीज जरूर पाई जाती है और वो है सुकून। कोई ऐसा जिससे शायद रोज बात हो ये जरूरी नहीं, पर जब बात हो तो लगे दिल ने सब कुछ बस कह ही दिया। और शायद हर खूबसूरत रिश्ते को नाम देना जरूरी भी नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ते ना सिर्फ महसूस किए जाते हैं। कहते हैं ना, कभी नाम नहीं दिया फिर भी रिश्ता खास रहा, वो दूर होके भी जाने क्यों दिल के पास रहा। ना कोई वादा था, ना मिलने की कोई वजह, बस एक खूबसूरत सा एहसास था जो हमेशा साथ रहा। कोई याद आया? 5000-1896 waiting for your messages। Instagram मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंश। Enjoy।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vidva la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो मुकेश जी.
2: कौन
3: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
2: नहीं हो पाया भाई.
3: हाँ, वो नहीं हो पाया सर.
2: हाँ जी, नहीं पाया
3: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
2: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
3: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक
2: क्या समझ रहे हो भाई.
3: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डल रहा है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
2: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
3: सर? वो
2: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
3: नहीं सर,
2: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
3: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया.
2: क्यों नहीं हो पाया
3: सर? वो रात गाड़ी
2: बोल के तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
3: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक
2: क्या समझ रहे हो भाई.
3: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डल रहा है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
2: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
3: सर? वो
2: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
3: नहीं सर,
2: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया

0: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस ग्रीस लगाया
1: उसमें,
0: ग्रीस ग्रीस लगाया उसमें, हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
0: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
0: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है एफआईआर वगैरह कराने की।
0: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें, और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
2: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
1: तो जान निकाल दी हमारी।
2: मुकेश आपकी गाड़ी वहीं खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
1: कुकड़ू कु
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट मिर्ची टर्मिनल सीजन 5, पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
4: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
3: Powered by iPay Wallet.
5: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ no stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
6: Let's do the iPay.
3: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
5: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
7: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
8: With Baladna milk, laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
9: Baladna.
8: Taste that Qatar loves.
3: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
10: Hello shops. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba ji se advice li to kehte hain.
11: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. Profit aayega.
10: Relative se advice lo to kehte hain.
12: Kaam ko time do. 25 ghante kaam karo. Dark circles honge to future bright hoga.
10: Isiliye main aapke paas aaya hu promotion fund ke liye, jiske liye aap 50% equity le sakte ho.
13: Bhai kya kar raha tu? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
14: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now 7070-7687.

विशाल मिश्रा की खूबसूरत सी आवाज़, सचिन जिगर की कॉम्पोजिशन, एंड सच में कभी कभी लगता है कि कोई गाना इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। वैसे फिल्म स्त्री से मैंने आपको ये गाना सुनाया एंड ये मान ही लिया कि आपके दिल के जज्बात थे जो मेरे लिए थे एंड बस मैंने अपने रेडियो के जरिए उसे खुद तक पहुँचा दिया। मिर्ची अंशु फाइनली हफ्ते का वो दिन जिसका आपको और हमको होता है बेसब्री से इंतजार, इसने हमारी जिंदगी में दस्तक दे ही दी है। आई एम टॉकिंग अबाउट थर्सडे, बिल्कुल वीकेंड का आगाज जो है आज से होने जा रहा है एंड आई कुडंट बी मोर एक्साइटेड। एंड थर्सडे आए एंड अंशु आपके एंटरटेनमेंट का कैलेंडर ना सेट कराया रे ना यार, ये जो है ना काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। वैसे इस मुश्किल का हल बताने के लिए मैं आ चुकी हूँ। देखिए सबसे पहला इवेंट जो आपको डेफिनेटली अटेंड करना चाहिए तो उसका नाम है फेस्टिवल ऑफ वेकेशन एंड फन एंड दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग एट 974 बीच 16th ऑफ अक्टूबर दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो फैमिलीज के लिए खासकर बच्चों के लिए फ्रेंडली है, उनको एंगेज एंड एंटरटेनमेंट रखने के लिए पूरी तरह से काबिल है, ये यहाँ पर होने वाली है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। वेदर जो है ग्रेजुअली बेटर होते जा रहा है, आउटडोर एक्टिविटीज हमारी जिंदगी में शामिल होने वाली है, तो चलिए एक प्लान जो है आपका मैंने बनवा दिया। बाकी 3 घंटे का सफर है यार, लंबी बातें होंगी। अभी फिलहाल शंकर महादेवन एंड श्रेया घोषाल की आवाज में बहुत ही प्यारा सा ये अगला गाना मैं आप तक पहुंचाती हूँ एंड अगर गाना पसंद आया, सच कह रही हूँ, थैंक यू मैसेज जो है ना वो बनता है, नहीं तो गुड मॉर्निंग में चलेगा यार। 5000 1896 ईगली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कथर या मिर्ची अंशु, एंजॉय बंदी का नाम अंशु।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
1: खटखट,
2: कौन है?
1: दवे।
2: दवे कौन?
1: The way you love me। आई हाय मर जावा।
2: खटखट, who that?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Wolstermann में जसलीन रॉयल की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज. ये प्यारा सा गाना तो मैंने सुनाते हुए आपके चेहरे पे मुस्कान बस ले ही आई. अब जरा देखते हैं ये जॉय की कहानी क्या आपको पता है.
1: मिर्ची अंशु
0: Hello, welcome back. You're listening to Meet Him Mirchi, and this is RJ Anshu with you. Well, आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए एक बार फिर से आ चुकी हूँ. और हाँ, आपसे कुछ तो गुफ्तगु करने का अब मेरा इरादा हो ही चुका है. नहीं, मूड बन गया है तो वो तो मैं करूंगी. अभी तक आप सुन रहे थे, लेकिन आप जो है अब मुझे कुछ सुना पाएंगे. खरी खुरी बातें नहीं, घर वाले काफी हैं उसके लिए. मेरे सवाल का जवाब, वेल, आप जानते हैं कि वक्त हो चला है कि एक ऐसे सेगमेंट को मैं आपके बीच पेश करूं जहां पर हर दिन कोई ना कोई सिटी की कहानी मैं आपके बीच बयां करती हूं, एक शहर की दास्तां मैं आप तक पहुंचाती हूं. तो बस ये सिलसिले को आज रखते हैं हम कंटिन्यूड. एक बार फिर से कोई तो सिटी है जिसकी एक टैगलाइन मैं आपके बीच पेश करूंगी. आपको इस टैगलाइन को आइडेंटिफाई कर मुझे ये बताना है कि ये टैगलाइन किस सिटी, किस शहर को दिया गया है. एंड उसके बाद कुछ देर में इसकी दास्तान, आखिरकार ऐसा क्यों है, मैं आप तक पहुंचाऊंगी. करेक्ट आंसर कहां देंगे आप? 5000 1896. 5000 1896 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची आंशु. तो आज का मेरा सवाल ये है कि भारत का वो कौन सा शहर है जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है. सिटी ऑफ जॉय, यू नो, खुशियों का शहर. खुशियों का शहर आखिरकार भारत में किस शहर को कहा जाता है और वो किस स्टेट को बिलोंग करता है. सिटी ऑफ जॉय. 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची आंशु. मीनवाइल सुर निगम की आवाज महालक्ष्मी अय्यर का साथ, ये अगला पावर पैक गाना आपके लिए. इंजॉय.

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: नेशनल अवार्ड विनर अजय देवगन, क्या आपको हमेशा से एक्टिंग करनी थी?
3: इट वॉज नेवर एक्टिंग, इट वॉज ऑलवेज आई यूज टू मेक माई ओन फिल्म्स। आई वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, आई यूज टू एडिट, आई यूज टू डायरेक्ट, आई वॉज अ कैमरामैन, आई यूज टू डू एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर एक्टिंग।
2: व्हाट कैन आई से अजय देवगन, आई एम जस्ट ग्लैड कि फूल और कांटे हैपेंड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज एंड दिस हैपेंस टू बी वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट ट्रैक्स. करण गाने जो मुझे बहुत पसंद है द टाइटल ट्रैक ऑफ फिल्म सियारा.
1: मिर्ची अंशु.
0: वैसे अगर मैं अपने फेवरेट की बात करूं तो उस लिस्ट में आपका नाम जो है वो जरूर आता है. जरा देखे ना, जब से मैं कोई सवाल पूछूं ना, आप जो इतना बढ़ चढ़ कर उसका जवाब देते हैं ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. वैसे अब से कुछ देर पहले मैंने आपके बीच एक सवाल रखा था कि अगर एक भारत के ऐसे शहर की मैं बात करूँ जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, खुशियों का शहर कहा जाता है, तो आपके हिसाब से उसका जवाब क्या है. अगर अभी भी आपको लगे सही जवाब पता है तो 5000186 पर भेज देना. मीनवाइल लोगों ने क्या कहा ये मैं आपको बताई दूं.
2: हाय अंशु, सिटी ऑफ द जॉय इट्स कोलकाता, वेस्ट बंगाल.
3: इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स कोलकाता.
0: जी,
3: कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा
0: जाता. क्या बात, क्या बात.
4: हाय दिस इज नदीम. वेस्ट बंगाल के कोलकाता के कलकत्ता को कहा जाता है खुशियों का शहर.
0: Well, आप सबने जो कहा, जितने लोगों ने लिखकर जवाब दिया ये पूरी तरह से सही, तो सबसे पहले आपके लिए तालियां हो जाएं जी. Well, सिटी ऑफ जॉय की बात करें तो वेस्ट बंगाल के कैपिटल यानी कि कोलकाता को कहा जाता है. लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिरकार कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय क्यों कहते हैं. Well, इसके पीछे ना एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है. 1985 में एक फ्रेंच राइटर थे डोमिनिक लापियर, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द सिटी ऑफ जॉय. एंड बात इतनी है कि ये बुक कोलकाता के पास हावड़ा की एक बस्ती में रहने वाले लोगों की जिंदगी से इंस्पायर्ड थी. देखो वहाँ लोगों के पास ना पैसे कम थे, जिंदगी जो है वो आसान भी नहीं थी, रोज की अपनी मुश्किलें थी, लेकिन फिर भी लोग जो हैं एक दूसरे का साथ दिया करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे एंड छोटी छोटी बातों में खुशियां जो हैं बस ढूंढ लेते थे. एंड बस इसी स्पिरिट को लेकर राइटर ने अपनी बुक का नाम रखा द सिटी ऑफ जॉय. एंड ग्रेजुअली द सिटी ऑफ जॉय जैसे कि ये बुक दुनिया में पॉपुलर हुई, कोलकाता के साथ इसका नाम जुड़ा एंड कोलकाता भी देश दुनिया में खुशियों के शहर के नाम से जाने जाना लगा. बढ़िया है जी. मैं तो कहूँ, सच कहूँ, अगर खुशियों के शहर की बात करें तो मुझे तो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कोलकाता में जाकर पुचका खाने में, साथ में हाय वो रसगुल्ला खाने में. आप मुझे बताएं जब मैं अगली बार कोलकाता जाऊँ तो मुझे कौन सी डिश ट्राई करनी है. अगर कोई कोलकाता से मेरे साथ जुड़ा है प्लीज़ मुझे बताओ यार. 5000186 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु. मीन वायल अक्षत की आवाज़ ने अगला प्यारा सा गाना आपके लिए. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

यार मैंने ना इन लोगों को एक खास नाम दिया है और वो है सुकून। मिर्ची अंशु यार एक बात बताना, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिन जो है जरा कम अच्छा गुजरा हो? शायद ऑफिस में कुछ अच्छा नहीं हुआ, ट्रैफिक ने अलग परेशान कर दिया, बहुत सारी बातें हुई एंड उसके चलते मूड जो है ना कहीं जरा खराब सा हो गया। लेकिन इन सब के बीच अचानक से हमारा फोन बजता है और एक ऐसे इंसान की आवाज सुनाई देती है जो ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस यही पूछता है, सब ठीक तो है ना, खाना खाया तो नहीं? एंड पता नहीं क्यों सडनली ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बेटर होने लगा। यार पता है, मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, लेकिन उनके होने से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो हैं ये जरा छोटी लगने लगती हैं। किसी के लिए उनके पेरेंट्स, दोस्त, हमसफर या ऐसा कोई शख्स जो हमारे साथ क्लोजली रिलेटेड ना हो, लेकिन फिर भी सभी रिश्तों से बढ़कर ना उनसे हमारा ये रिश्ता हो। एक बात बताऊं, अगर जिंदगी में ऐसा कोई शख्स है ना, तो कभी कभी बिना किसी ऑकेशन के भी ना हमें अपनी दिल की बात उन तक पहुंचा देनी चाहिए ना, कोई खास वजह नहीं, बस उन्हें पता हो कि वो तुम्हारे लिए कितने खास है। चलिए, आप मेरे लिए बहुत खास हैं, इसलिए अगला प्यारा सा गाना मैं आप तक पहुंचाती हूँ। टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virgo alla burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: हेलो, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
1: किसके यहाँ से?
2: स्वर्गीय अनिल चौहान।
1: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
2: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब। मैं बोल रहा हूँ
1: अनिल ही बोल रहा हूँ, स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ।
2: सर, स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है। सर, मैं से बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से। तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए।
1: दिमाग खराब है, अब मैं खुद बोल रहा हूँ, तो सोच कम से कम।
2: सर, आप ये बेवकूफी की बात ना करें, आप एक तो जुबान सवाल की बात करें। मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने, आपकी रिपोर्ट आ गई है। सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट।
1: स्वर्गीय नहीं, तो अनिल चौहान से ही बात कर रहा है।
2: स्वर्गीय अनिल चौहान, यार आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
1: खराब हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई, मैं रहा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
2: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप।
1: नहीं,
2: मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया, स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई। बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने। दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो, एक ही रिपोर्ट है दोनों की।
1: डॉक्टर बोल रहा हूँ,
2: मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार, मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका। केस हम क्या करेंगे? केस तो मैं उन पे करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे, वो बाप बनने वाले।
1: परिवार वाले आदमी से भी बात करता है, कौन है तेरी
2: बेवकूफी की बात मत करिए आप। आप आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके। पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं
1: जी।
2: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से? मेरी बात सुनिए, आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है। अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया है, आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें।
1: बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं।
2: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है, अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: हू दैट?
4: जाहिर।
5: जाहिर, जाहिर हूँ।
4: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
5: खट खट, हू दैट?
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची फ्रेश माल नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: हू दैट?
4: जाहिर।
5: जाहिर, जाहिर हूँ।
4: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
5: खट खट, हू दैट?
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची,

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: देखो मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि कहीं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन हाँ ये टूर्नामेंट देखने जरूर जाऊंगी। कल के दिन क्रेडिट जो ले पाऊंगी कि भैया मेरे आशीर्वाद से ही तो ये बच्चे आज इतने आगे बढ़े हैं।
2: मिर्ची अंशु।
1: वेल, जितने भी फुटबॉल फैंस इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड हैं, इतना ही कहना चाहूंगी कि आप जो हैं अब तैयार हो ही जाएं, क्योंकि इस बार बात सिर्फ एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार्स की नहीं, बात उन यंग प्लेयर्स की होगी जो फुटबॉल लेजेंड्स कल के दिन बन ही सकते हैं। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कतर 2026, जो कि 19th ऑफ नवंबर से 13th ऑफ दिसंबर तक होने जा रहा है, एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। देखिए 48 कंट्रीज, एंड सबसे खास बात अगर ग्रुप स्टेज मैचेस की बात करूं तो इस बार वो होंगे एस्पायर जोन में, जबकि अगर फाइनल्स को देखें तो 13th ऑफ दिसंबर को ये होस्ट किया जाएगा खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में। यार 16 से 17 साल के बच्चे इंटरनेशनल स्टेज पर जब अपने देश की जर्सी के साथ न जाने कितने हजारों की एक्सपेक्टेशंस के साथ मैदान पर उतरेंगे, जरा सोचो यार वो नज़ारा कितना खूबसूरत होगा। मैंने तो सोचा पक्का ये टूर्नामेंट देखने जाऊंगी और कहूंगी कि बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब कल के दिन हमें फ्यूचर का मैसेज रोनाल्डो मिलेगा तो कह तो पाऊंगी अरे अरे ये बच्चे तो मेरे सामने बड़े हुए, मेरे आशीर्वाद से बड़े हुए। नहीं, मुफ्त का क्रेडिट लेना जरा अच्छा लगता है। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
1: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
0: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6
3: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

बस यूं ही धरती से आसमान तक का सफर आपने और हमने मिलकर तय कर ही लिया। मिर्ची अंशु यार देखो, ये बात तो आपने और हमने बहुत अच्छी तरह से सुनी है कि संगीत में वो ताकत है कि वो सरहदों को जोड़ता है, देशों को जोड़ता है, दिलों को जोड़ता है। लेकिन भाई साहब, इस वक्त संगीत में कुछ ऐसा पावर निकला कि अर्थ को स्पेस से जोड़ दिया। बिल्कुल ठीक सुना आपने। आप सोच रहे होंगे, अंशु क्या स्पेस में भी मिर्चीवन खुल गया? जी आपकी दिली तमन्ना और हम पूरी ना करें, इंशाल्लाह एक दिन जरूर होगा। लेकिन इस वक्त मैं जो है अर्थ पे आ जाऊं वापस। वेल, नासा के साइंटिस्ट ने स्पेस में कुछ ऐसा देखा है जो बिल्कुल म्यूजिक के एक सिंबल जैसा दिखता है। देखो, आपने म्यूजिक की बुक्स में वो गोल गोल घूमता हुआ सा एक सिंबल तो देखा होगा जिसे हम कहते हैं ट्रबल क्लेफ। बस साइंटिस्ट को स्पेस में रेडियो वेव से बनी हुई एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर मिली जिसका शेप जो है बस उसी सिंबल जैसा दिखता है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? ये अर्थ से लगभग 1.55 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। एंड इसे इतने खूबसूरत तरह से ट्रेस कर लिया गया। एंड आई कुडंट बी मोर एक्साइटेड। भाई साहब, बहुत जल्द जो है गजब की मिर्ची वाली धुने भी वहां पर पहुंच जाएंगी। क्या पता अंशु जो है स्पेस में बैठ के आपसे बातचीत करने लगे। हाय, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: अनिल कपूर सर, I'm sure आप ये सुन सुन के थक चुके हैं कि आप इतनी यंग कैसे दिखते हैं, but I really would like to know, आपको खाने में क्या पसंद है?
3: जैसे मैं क्या, मैं हर चीज खाता हूँ, but I love all kinds of food. I love Japanese food, Chinese food, Indian food, North Indian food, South Indian food, और Gujarati food. Sometimes I love Thai food, Mexican food. खाने में I'm not fussy about food. दिल से प्यार से अगर कोई बना के दे तो मुझे अच्छा लगता है.
2: आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood Bolda. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: Cut, cut.
5: Who there?
4: Whom are you?
5: Whom are you who?
6: Aray, whom are you looking for, madam?
5: Cut, cut. Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: अजी किसने कहा कि लड़कियों को मनाना जो है ये बड़ा मुश्किल है।
1: मिर्ची अंशु,
0: अरे हमें मनाना मुश्किल नहीं, तुम्हें मनाना जरा आता नहीं है। भाई साहब जिंदगी में जो है ना, अगर खुशहाली लानी है तो ये बात तय कर लीजिए कि तुम्हारे घर में जितनी भी महिलाएं हैं वो हमेशा खुश रहें। एंड महिलाओं की खुशी की बात करें तो शॉपिंग जो है ना, हाय हमारे लिए सिर्फ एक जरिया नहीं, एक थेरेपी से कम नहीं। एंड उसमें भी अगर बात हो जाए सोने की तो भैया ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। एंड अभी तो मौका भी है, दस्तूर भी अच्छे खासे रेट्स जो है। जरा देखें अलप्रदान एक्सचेंज में आज का गोल्ड अपडेट क्या कहता है।
2: गोल्ड अपडेट,
0: वेल अगर आज आप परचेसिंग करना चाहेंगे सो पैम्प 1 ग्राम गोल्ड एडी फॉर्चुनाबाद टुडे इज प्राइस एट कथरियाल्स 565। अगर मैं बात करूं 5 ग्राम्स की सो इट इज प्राइस एट कथरियाल्स 2643। अगर 10 ग्राम्स की बात करें सो इट इज प्राइस एट कथरियाल्स 5217। एंड अगर वहीं मैं 1 आउंस की बात करूं सो इट इज प्राइस एट कथरियाल्स 16124। लेकिन अगर आप देखना चाहेंगे 10 तोला तो भाई ये प्राइस है कथरियाल्स 59854 पर। तो बस अच्छी खासी चेसिंग करें, बाकी मल बांट के पहनेंगे। जस्ट सिंग स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।
2: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अलप्रदान एक्सचेंज, पैम्प्स ऑफिशियल एजेंट इन कतार। बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम्प गोल्ड बार्स एंड अर्न कतार एयरवेज एवियोस टुडे। विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ।

0: अजी सुनो, जब प्यार किया तो डरना क्या। अरे नाना, सिंगिंग पे कोई अटेम्प्ट मेरा इस वक्त नहीं लग रहा, ना ही जिंदगी का। मैं आपको कोई उसूल सिखा रही, कोई तो खास बात है जो बस आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कर रही।
1: मिर्ची अंशु
0: यार देखो, बात जो है ना बड़ी सिंपल है। अगर बॉलीवुड की फिल्मों की बात करें तो कुछ फिल्में हैं जो हमें एंटरटेन की, कुछ फिल्में हैं जिन्होंने हमें इंस्पायर किया, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी रहीं जिन्होंने पूरी तरह से इंडियन सिनेमा को अमर बना दिया। एंड उनमें से एक फिल्म है मुगल-ए-आज़म। इमेजिन करें कि वो लव स्टोरी जिस कहानी ने हमारे दिल को कुछ इस तरह से छुआ कि आज भी उसकी झंकार हमें सुनाई देती है, वो लाइव स्क्रीन पर हम ठीक अपनी आंखों के सामने नहीं बल्कि लाइव थिएटर के तौर पर परफॉर्मेंस एक्ट के जरिए देख पाएं तो वो एक्सपीरियंस कितना खूबसूरत होगा। तो जितने भी बॉलीवुड एंड थिएटर लवर्स हैं, ये आपकी ख्वाहिश अब पूरी होने जा रही है। ऑन 6th and 7th of November एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर अल मयासा थिएटर, जब एक बार फिर से मुगल-ए-आज़म का जादू हम जी पाएंगे मुगल-ए-आज़म द म्यूजिकल के जरिए। एंड ये कॉन्सेप्ट जो है ना यार, मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है कि एक कहानी जो जनरेशन पहले सिनेमा पर आइकॉनिक बनी, वो जनरेशन चेंज होने के बाद भी आज भी जिंदा है। अनारकली, सलीम, वो डायलॉग्स, वो म्यूजिक, वो ग्रैंडर, यार इससे खूबसूरत एक्सपीरियंस और क्या होगा। तो अगर आपको लगता है कि 6th and 7th of November को आप भी इस आइकॉनिक स्टोरी को फिर से जीना चाहते हैं तो बस विजिट कतर के पेज पे जाइए, सारे डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगे। फटाफट से टिकट्स जो है आप परचेज करिए, अपने नाम की और एक मेरे नाम की, साथ में मिलकर एंजॉय करें। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: Pepe Mucci. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Mucci, burga. हेलो
2: ये कमलेश जी।
1: हाँ जी कौन?
2: कमलेश जी गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने लाजवंती ने वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन से पैसे चाहिए तुम्हें?
2: नहीं देखिए एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का खिलाब उसकी बाहर की दीवार देखो उसमें पुताई होनी है।
1: देखिए
2: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
1: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें, बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे, कोई त्योहार नहीं है कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चन्ना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती ना मान रहे।
3: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for. Because we feel we're all family. And my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you with us?
1: Yes, madam, I'm there. I understand, मैं समझ रहा हूँ आपको. What is the amount?
3: Sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
1: No, not an issue.
2: 750 only? Yes, sir, absolutely. No, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam ghej mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
4: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
5: GWM के मिर्ची रिचार्ज में आइडियल इंडियन स्कूल के बच्चों ने की ढेर सारी मस्ती एंड फन। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
6: 89.6 मिर्ची वन से मैं हूँ आरजे मस्तवाला गौरव और मैं आया हूँ आज आइडियल इंडियन स्कूल में और मेरे साथ ढेर सारे बच्चे हैं। यू गाइस एंजॉय इट।
7: It was great fun. Thank you, Mirchi. Thank you, GWM.
8: Thank you, Mirchi, for the GWM recharge. It was really fun, especially the magic show.
9: And show Gaurav, Afin, thank you very much.
10: खट खट
11: कौन है?
10: अज्जू।
11: अज्जू कौन?
10: अज्जू ना आए बालमा सावन बीता जाए होए।
11: खट खट who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

यार सच कह रही हूँ, द मोमेंट मुझे पता चला कि ऐसा कोई कंपटीशन हो रहा है, मेरे दिल से पहला रिएक्शन बस यही निकला, अरे भाई साहब इस चैंपियनशिप में तो मेरी मम्मी को पार्टिसिपेट करना चाहिए था। मिर्ची अंशु अजी पावर स्लैप जैसे कंपटीशन की बात हो और उनमें मम्मियों का नाम ना आए तो बताएं किसका ही आए। बिल्कुल ठीक सुना आपने। वाले इस वक्त अगर मैं दोहा को देखने की कोशिश करूं, सो 19th of November is going to be indeed very exciting because Power Slap 27 is finally coming to Doha. अली बिन हमद अल अतिया अरीना में अच्छे अच्छे लोगों को आप झापड़ खाते हुए देखेंगे, नो पापड़ की तरह। वेल ये जो कॉम्पिटिशन है ये पूरी तरह से प्रोफेशनल स्केल पे होस्ट किया जाता है एंड कम्पेटिटर्स लिटरली फेस टू फेस खड़े होकर एक दूसरे को थप्पड़ मारते हुए नजर आते हैं। नाउ दिस इज एन एक्चुअल रेगुलेटेड स्पोर्ट। वेल इतना ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा कोई कंपटीशन हो तो क्या आपके दिल में मेरे दिल की तरह ख्याल आता है कि इंडियन मॉम्स को यहाँ पे एंट्री मिल सकती है क्या? क्योंकि हमारे बचपन में तो पावर स्लैप के लिए ना अरीना चाहिए था, ना कोई रेफरी, ना कोई चैंपियनशिप टाइटल, बस मम्मी को जरा सा छेड़ना था या रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स जो है वो थोड़े कम लाने थे एंड उसके बाद देखो इसका सिलसिला क्या पावर पैक तरह से हमारी जिंदगी में शुरू हुआ करता था। क्या आपने खाया झापड़ पापड़ की तरह? 5001896 waiting for your messages. Instagram mirchi1 katariya mirchi anshu. Meanwhile you all stay tuned to mirchi bandi ka naam anshu. Enjoy.

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ no stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: Khat khat.
9: Who that?
8: Akbar.
9: Akbar who?
8: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे.
9: Khat khat. Who that?
10: Only on 89.6 Mirchi 1.
11: Mirchi.
10: It's hot.

0: सी पावर पैक आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म केदारनाथ. ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन अब आपके सबसे काम पते की बात मैं आप तक पहुंचा दूं.
1: मिर्ची अंशु
0: यार पता है, कतर में आने के बाद ना एक बात जो है मैंने जिंदगी में जरूर सीखी है, कहीं ना कहीं से अप्लाई करना भी शुरू किया है, और वो ये कि खुशियों की अगर हम बात करें, हैप्पीनेस को देखने की कोशिश करें, तो इसका इंतजार जो है ना मैं बड़ी चीज़ों के लिए बिल्कुल नहीं करती यार. अगर आप देखने सोचने की कोशिश करेंगे ना, जेन्युइनली लाइफ की वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो इवेंचुअली एक बड़े हैप्पीनेस को हमारी ज़िंदगी में जन्म देती हैं. कोई शख्स है जो आपसे मुस्कुरा कर बात कर ले, ऑफिस में कुछ ऐसा हो जाए जो शायद आपने सोचा नहीं था लेकिन आपके फेवर में हो गया, यू नो आपका कोलीग जो है आपके लिए कॉफ़ी का कप या मग बना कर ही ले आए. नाउ दीज आर लिटरली लिटिल स्मॉल थिंग्स, बट दे ब्रिंग इमेंस जॉय इन आवर लाइव्स. एंड जिस दिन आपने इन सब बातों में खुशी ढूंढनी शुरू कर दी ना, आपको ये कभी लगेगा नहीं कि यार पता नहीं मेरी ज़िंदगी में खुशी आखिरी बार कब आई थी, ये तो महसूस करने की बात है. हाँ, लेकिन एक बात जो मुझे कतर में ज़रूर खुशी देती है वो ये जब एक्सचेंज करे ज़रा सा बढ़ जाए, एंड खासकर जब सैलरी आने वाली उस वक्त बढ़े तो और ज़्यादा खुशी होती है. लेकिन कई लोगों ने पैसे जो है बचा के रखे हुए हैं, ज़रा देखेंगे मिड मंथ में एक्सचेंज करे तो आज आईपे मनी में क्या ही बोलता है. वेल, अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो वन रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.06, पाकिस्तानी रुपीज 76.12, लंकन रुपीज 90.88, बांग्लादेशी टका 33.86, एंड इसके साथ ही नेपाली रुपीज 41.65. तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहे कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची. इट्स हॉट, एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: कुणाल खेमू, अपने कॉलेज डेज में आपने सबसे बढ़िया जुगाड़ कौन सा किया?
2: हम लोग थिएटर जब करते थे कॉलेज में, ये तो नॉर्मल जिंदगी थी उस वक्त, लिमिटेड पॉकेट मनी होती थी, चल चल के पैसे बचाए जाते थे, रिक्शे के कैसे शेयरिंग में कभी किसी को धोखा देके भाग लेते थे।
1: कुणाल खेमू वो इंसान आज भी आपके पीछे भाग रहा है। व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: भट्ट, अरे भट्ट हूँ।
4: भट भट भट भट भट भट भट बाइक बहुत आवाज करती है।
3: खट खट, हु दैट?
5: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: श्रीवास्तव की खूबसूरत सी आवाज़। इन सच कह रही हूँ, मुंह मीठा ना कराएं आपका तो फिर क्या ही कराएं।
1: मिर्ची अंशु
0: Hi, welcome back. You're listening to Meethi Mirchi and this is RJ Anshu with you. And let me tell you, I'm so very excited. बहुत खुश हूँ यार मैं। फाइनली जब थर्सडे का दिन आता है ना तो मेरा दिल जो है वो बच्चों की तरह उछलने कूदने लगता है। देखो यार, वैसे तो हफ्ते का हर एक दिन जो है ना मुझे बड़ा प्यारा है, क्योंकि मैंने एक बात बहुत अच्छी तरह से बचपन में अपने पापा से सीख ली थी कि ह्यूमन माइंड जो है ना बेटा बड़ा कमाल होता है। उसे ये लगता है कि भाई बस वीकेंड कब आएगा, वीकेंड कब आएगा, एंड उस वीकेंड के इंतजार में वो हफ्ते के 5 दिन जो है ना कहीं मायूसी से, कहीं ना कहीं इंतजार से निकाल देता है। लेकिन अगर एक साल को आप देखें, फॉरगेट अबाउट इट, अगर आप एक हफ्ते को ही देखें तो भैया मेजर चंक जो है ना एक हफ्ता लेकर जाता है। वीकेंड जो है वो महज एक या लोगों की जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों के लिए आता है, तो उस 2 दिन की खुशी के लिए आप जो है मेजर चंक को भूल जाएंगे ना यार। तो वैसे तो हर एक दिन को मैंने दिल से जीना, खुशी मनाना शुरू कर दिया है, लेकिन अगर वीकेंड की बात करें तो ये वो दिन होते हैं जो बच्चों के लिए दरअसल पढ़ाई करने के बाद फाइनली समर वेकेशन का मौका आता है, मौसम आता है। तो बस ये वाला जो वेकेशन हर हफ्ते आता है ना, तो भैया नानी घर की याद कुछ ऐसी आती है कि हमारा घर ही जो है, दोस्त यार जो है वो नानी घर के जैसे बन जाते हैं, एंडल का बच्चा एक बार फिर से जिंदा हो जाता है। तो भाई मेरे वीकेंड के प्लान तो सेट हैं, बहुत गजब खाना पीना है, दोस्त यारों के साथ घूमना है, हाँ खूब सारा सोना है, एंड साथ ही फैमिली के साथ बहुत ज्यादा दिल वाला सच्चा वाला वक्त बिताना है। व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द वीकेंड? आई एम रियली वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। 5000 1896 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, मीनवाइल हबीबी मुलाकात होगी सैटरडे को बेस्ट ऑफ द वीक के साथ। अंटिल देन श्रेया घोषाल स्वरूप खान की आवाज में अगला गाना आप तक छोड़ती हूँ। मसल्ला महबीबी।
2: आओ जी आओ।

0: बीटा उनकी कहानियों का कैमरा धीरे धीरे यूपी बिहार की तरफ बढ़ रहा है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वेल, एक वक्त था जब बॉलीवुड की कहानियों का सेंटर हुआ करता था मुंबई, दिल्ली और बड़े बड़े शहर, लेकिन अब कहानियों का कैमरा धीरे धीरे यूपी और बिहार की गलियों, कस्बों और छोटे शहरों की तरफ भी मुड़ रहा है, क्योंकि भाई असली इंडिया की कहानियां सिर्फ मेट्रोज में नहीं मिलती, इन्हीं गलियों में बसी होती हैं। और अब देखो, यूपी बिहार सिर्फ फिल्म मेकर्स को स्टोरीज ही नहीं दे रहे, बल्कि एक स्ट्रांग कल्चरल आइडेंटिटी भी बन रहे हैं। यहाँ की बोली, लोकल ह्यूमर, पॉलिटिकल अंडरटोन्स और स्पिरिचुअलिटी, सब कुछ सिनेमा के लिए एक रिच कैनवस है। गैंग्स ऑफ वसीपुर से लेकर लापता लेडीज तक, जमतारा से लेकर मिर्जापुर तक, स्मॉल टाउन इंडिया ने दिखाया है कि वहाँ की स्टोरीज में कितनी वैरायटी और दम है। इनफैक्ट इसी रीजनल कनेक्ट में स्पिरिचुअलिटी और लोकल कल्चर भी प्रमोशनल स्टोरी टेलिंग का हिस्सा बन रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर फिल्म द वन आई थी, जिसमें छठ पूजा को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया गया था। और अब यामी गौतम की अपकमिंग फैंटेसी फिल्म नई नवेली, जो 16th ऑफ अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, उसके प्रमोशंस फुल स्विंग में हैं। इनफैक्ट बनारस की राम की पैड़ी पर इस फिल्म के डिवोशनल ट्रैक अवधिया के राजा की लाइव परफॉर्मेंस भी इसी कल्चरल कनेक्ट को हाईलाइट करती है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, बॉलीवुड को अब समझ आ रहा है कि कहानी चाहे बनारस की गलियों से निकले या बिहार के किसी कस्बे से, अगर उसमें अपनापन है तो वो पूरे देश के दिल तक पहुंच सकती है। Well, what are your opinions about that? मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके मुझे जरूर बताना। Till then, enjoy the upcoming songs right here on Mirchi. It's hot.
3: Meethi Mirchi, presented by Absolute Barbecues. From savory to sweet, experience the ultimate flavors at Absolute Barbecues.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vizba la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: आकाश
1: जी,
2: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
1: हाँ, बिल्कुल
2: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
1: मेरी गर्लफ्रेंड है।
2: ओहो, यही मिली है आपको?
1: जी, बहुत पंगे लेती है।
2: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
1: ठीक है,
2: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
1: आकाश मल्होत्रा।
2: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे,
1: राइट?
2: चलिए। अच्छा, इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा, ठीक है?
1: जी, डेफिनेटली।
2: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
1: अच्छा,
2: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
1: क्या कह रहे हैं?
2: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
1: क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सभी होता है?
2: नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली हैं तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, अब आप मजे लीजिएगा, है ना?
1: फिर देखिए।
2: हाँ बताइए। चलिए, मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
1: जी।
2: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ों आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारे मुर्गा बन
1: मेरा बन गया कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
4: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
5: दोनों मिलेगा।
6: का नंबर वन रेडियो स्टेशन, 89.6
0: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। हंसल मेहता इज बैक बिहाइंड द कैमराज। उनकी अपकमिंग अनटाइटल्ड सीरीज की शूटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और इस सीरीज में सनी कौशल, बिपाशा बासु और विशाल जेठवा जैसे स्टार्स नजर आने वाले हैं। बाकी इसका बैकड्रॉप होने वाला है ड्रग माफिया और सनी बन रहे हैं एक इनकरप्टेबल पुलिस ऑफिसर। बाकी की डीट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। From playback singing to on-screen debut, so director Imtiaz Ali और producer Mahavir Jain कुछ fresh faces introduce कर रहे हैं अपनी upcoming friendship comedy side heroes के लिए। And one such face has been finalized, ये हैं हीर, जो एक playback singer हैं। इन्होंने बटवारा, 1947 and पैदी जैसी फिल्मों में अपनी आवाज दी है। And reports have it that इनका Bollywood debut होने वाला है side heroes के साथ। Official announcement का इंतजार अभी भी कर रहे हैं हम। Confirm होते ही आपको जरूर बताऊंगी। अनुपम खेर एज जटायु, नहीं वो एक्ट नहीं कर रहे हैं भाई, जटायु को एनिमेटेड बनाया गया है ना इन अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म रामायण पार्ट वन। सो जटायु का किरदार जो है उसकी आवाज दी है नन अदर देन द लेजेंडरी अनुपम खेर सर ने। बाकी द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 5th of November, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पिटी उन्होंने आवाज़ से पहले की आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े। मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ। बाबू मोशाय हेलो जी हाय। तो भाई ड्रिल ये होता है कि आपको मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में अपना नंबर भेजना होता है ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूं। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे कौन है?
3: आपकी बात हो रही है नवनील से।
0: ओह माय गॉड दैट स्टाइल, आई लाइक इट, क्लॉक इट। अच्छा आप ये एक बात बताओ, गेम खेलने के लिए तैयार हो आप?
3: बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल है, जजंतरम ममंतरम के लीड एक्टर कौन है?
3: जावेद जाफरी।
0: क्या बात है, जावेद जाफरी डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे किस फिल्म में आ जाते हैं?
3: धमाल धमाल धमाल धमाल।
0: धमाल में मानव का भाई कौन है?
3: अरशद वारसी।
0: अरशद वारसी किस फिल्म में भाई ने बोला करने का तो करने का?
3: मुन्ना भाई एमबीबीएस।
0: मुन्ना भाई में डॉक्टर अस्थाना की बेटी से किसको प्यार होता है?
3: तो मुन्ना भाई को, संजय दत्त।
0: संजय दत्त किस फिल्म में जुल्मी बड़ा दुखदायक है?
3: खलनायक।
0: खलनायक में किसकी चोली के पीछे दिल है?
3: माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित।
0: माधुरी दीक्षित का घाघरा किस फिल्म में टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है?
3: जिसमें रणवीर था, ये जवानी है दीवानी।
0: बहुत बढ़िया। ये जवानी है दीवानी में बनी के बेस्टी से किसको प्यार होता है?
3: कल्की को प्यार होता है।
0: यस, कल्की की किस फिल्म में उनके बैग का नाम बैगवती होता है?
3: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
0: बहुत बढ़िया। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में पिंक फोन कौन चलाता है?
3: ऋतिक रोशन।
0: ऋतिक रोशन। रोहन लड्डू रायचंद किस फिल्म में है?
3: जिसमें शाहरुख खान है। कभी खुशी कभी गम।
0: कभी खुशी कभी गम में कह दिया, बस कह दिया, ये कौन बोलता है?
3: कह दिया तो कह दिया, करीना कपूर।
0: आए हाय, इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो ये नाम लिया है ना तुमने नवनील, बट कोई नहीं, इस गेम को इतना मस्त लेवल तक पहुंचाने के लिए आपको ये टैग तो जरूर दूंगी यार।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो बाबू मोशाय नवनील जिस पॉइंट पे अटक गए उसके आगे का गेम अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे अपना नंबर डीएम कीजिए, बाकी तो आई विल टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हो आप, और इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो मिर्ची फिल्म की गेम खेलने की बात कर रही हूँ। बाबू मोशाए, और आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे थे नवनील, बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट, और उसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है विशाल। तो शुरू करें?
3: जरूर करूंगा।
0: ऑल राइट, तो जिस सवाल पे नवनील अटके थे वॉज कभी खुशी कभी गम में कह दिया तो कह दिया, ये कौन बोलता है?
3: अमिताभ बच्चन।
0: अमिताभ बच्चन गुरुकुल के सरू प्रिंसिपल किस फिल्म में बने हैं?
3: शाहरुख खान वाली मूवी है वो, एक सेकंड एक सेकंड में। मोहब्बतें
0: में लोगों के आगे पीछे किसकी आत्मा डांस करती है?
3: मोहब्बतें में किस, ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय की फिल्म जिसमें वो एक हॉट शायरा बनी है?
3: ए दिल है मुश्किल
0: में अलीजे से एक तरफा प्यार किसको होता है?
3: रणबीर कपूर
0: किस फिल्म में पापा पगलू बने हैं?
3: ओके, ये तो अभी मूवी आई थी, मैं अनिल कपूर।
0: हाँ।
3: एनिमल पापा मेरी जान।
0: एनिमल में अबरार कौन है?
3: अबरार है हमारा बॉबी भाई।
0: बॉबी देओल की किस फिल्म में वाइफ स्वॉपिंग की बात होती है?
3: जिसमें अक्षय कुमार भी है। अजनबी यस यस।
0: ओके, अजनबी में बॉबी देओल की वाइफ कौन है?
3: अजनबी में बॉबी देओल की वाइफ है करीना कपूर।
0: करीना कपूर की किस फिल्म में रोबोट्स हैं?
3: एक्टर मतलब जो विलन होता है उसके नाम से ये मूवी है, रावण।
0: रावण में गेम डिजाइनर कौन होता है?
3: शाहरुख खान
0: कैदी नंबर 786 किस फिल्म में है?
3: वीर जारा
0: में उनकी डिफेंस लॉयर कौन बनती है?
3: उनकी डिफेंस लॉयर बनती है रानी मुखर्जी।
0: क्या बात है, रानी मुखर्जी की किस फिल्म में उनके हस्बैंड रेसर होते हैं?
3: तारा रंपम
0: में रेस करते हुए एक्सीडेंट किसका होता है?
3: उसका ही होगा, सैफ अली खान का ही।
0: तो भाई आज के हमारे दूसरे मिर्ची फिल्मची हैं विशाल जी।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: नहीं बाबू मोशाए, फोमो में जाने की जरूरत नहीं, ये गेम कल फिर से वापस आएगा राइट हियर ऑन मिर्ची, और पार्टिसिपेट करना है तो अभी से ही अपना नंबर मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे डीएम कर दो। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: देखिए कौशल, आपको देख के लगता नहीं है आप किसी चीज से डरते होंगे। डर लगता है आपको?
2: पानी के अलावा सांपों से बड़ा डर लगता है। डर से ज्यादा रिपल्स हो जाता हूँ, मुझे एकदम झंझरी सी मच जाती है एकदम शरीर में। क्या
1: जैसे झंझरी बोला है, मुझे अचानक से वो सेंसिटिव टूथपेस्ट से झंझनाहट। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: दोस्ती का कुछ सुना मैडम? नो सॉरी नो थैंक यू।
4: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
5: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
6: खूब मिलेगा, मिलेगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: बॉक्स ऑफिस पे बुरा परफॉर्मेंस डजंट मीन कि फिल्म भी बुरी थी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: एंड टाइम एंड अगेन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कई फिल्मों ने इस बात को प्रूव किया है। बाबू मोशाय हेलो जी हाय। आज पांच के पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ इंडियन कल्ट क्लासिक्स की बात करूंगी जो रिलीज के वक्त तो फ्लॉप रही बट लेटर ऑन उनको कल्ट क्लासिक का दर्जा दिया गया। लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे फिल्म जाने भी दो यारों के बारे में, देन वील टॉक अबाउट कागज के फूल, उसके बाद मेरा नाम जोकर, नंबर चार पे अक्टूबर एंड नंबर पांच पे ओए लकी लकी ओए। सो सबसे पहले तो कल्ट क्लासिक किन फिल्मों को बोला जाता है? वो फिल्में जिनके पास शार्प डायलॉग्स हों, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स ऐसी हों जो डेकेड्स के बाद भी फिल्म मेकर्स को इंस्पायर कर सकें, और थीम्स ऐसे हों जो रिलीज के कई सालों बाद तक भी रेलिवेंट हो। इन शॉर्ट अहेड ऑफ इट्स टाइम। सो लेट्स बिगिन विद फिल्म जाने भी दो यारों। 1983 में रिलीज हुई थी ये फिल्म जिसको कुंदन शाह ने डायरेक्ट किया, और मूवी में नसरुद्दीन शाह, सतीश कौशिक, ओम पुरी और पंकज कपूर जैसे अमेजिंग एक्टर्स थे। सो बेसिकली ये फिल्म 800,000 के बजट पे बनी थी, और जब ये रिलीज हुई तो सिर्फ 4 थिएटर्स में ही आई थी। इनफैक्ट ऑडियंस ने बहुत बुरा रिस्पॉन्स दिया था क्योंकि फिल्म का सटायरिकल अप्रोच जो था पॉलिटिकल थीम्स के साथ वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था। बट इन सारे चीजों के बावजूद कुंदन शाह को इंदिरा गांधी अवार्ड मिला बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के लिए इन द ईयर 1984 फॉर द सेम फिल्म। एंड 4 डेकेड्स के बाद आज जाने भी दो यारों इज कंसिडर्ड एज अ कल्ट क्लासिक। फिल्म नहीं देखी तो मौका निकाल के जरूर देखिएगा। एंड थैंक मी लेटर फॉर दैट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड इट्स हॉट।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। कैसे

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: हेलो मुकेश जी,
2: कौन?
3: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा
2: नहीं हो पाया भाई?
3: हाँ, वो नहीं हो पाया सर।
2: हाँ जी, नहीं पाया
3: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की।
2: हाँ
3: सर, वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
2: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हारे, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
3: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक
2: क्या समझ रहे हो भाई।
3: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डल रहा है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
2: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
3: सर, वो
2: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया।
3: नहीं सर,
2: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
3: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया।
2: क्यों नहीं हो पाया
3: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
2: है?
3: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
2: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
3: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
2: क्या करा दू
3: सर, मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
2: कैसी FIR, दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
3: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
2: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
3: नहीं सर, आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया उसमें, ग्रीस लगाया उसमें, हमने पेट्रोल डाला है।
2: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
3: अच्छा सर,
2: मुझे चाहिए अपनी वापस।
3: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
2: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
3: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें, और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
4: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
2: तो जान निकाल दी हमारी।
4: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
2: कुकड़ू कू
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी, सीरियसली माही?
7: यस बेबो,
6: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ।
7: यस yes.
6: कैच क्या है?
7: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स, और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
6: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
7: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
8: खट खट,
9: who there?
8: बनता
9: बनता हूँ।
8: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
9: खट खट, who there?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: कहानियाँ ऐसी जो सालों बाद भी रेलेवेंट हो।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: सो माय डियर बाबू मोशाय, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करूँ तो टाइम एंड अगेन वहाँ से हमें ऐसी फिल्में मिली हैं जो आज से 10-20 साल बाद भी आप देखेंगे तो टॉपिक काफी रेलेवेंट लगेगा। और आज वैसी ही कुछ कल्ट क्लासिक्स की बात कर रही हूँ अपने पांच का पंच की लिस्ट में, जिसमें सबसे पहले हमने जाने भी दो यारों को डिस्कस कर लिया। अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट कागज के फूल। ये फिल्म आई थी इंडिया 1959, डायरेक्टेड बाय गुरुदत्त, जो एक फिल्म डायरेक्टर के राइज एंड फॉल को एक्सप्लोर करती है विद इन द इंडस्ट्री। ऑल्दो ये मूवी रिलीज के टाइम एक बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी, क्योंकि इसका कॉम्प्लेक्स नैरेटिव जो है वो लोगों को काफी ज्यादा सोफेस्टिकेटेड लगा था। इनफैक्ट फिल्म की परफॉर्मेंस से इनिशियली गुरुदत्त इस तरीके से परेशान हुए थे दैट उन्होंने ऑफिशियली डिसाइड किया कि वो कभी भी डायरेक्शन नहीं करेंगे। बट आज देखिए, इस फिल्म के इनोवेटिव टेक्निक्स एंड प्रोफाउंड थीम्स इसको लीक से हटके बनाते हैं। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फिल्म मेरा नाम जोकर के बारे में, जो 1970 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय राज कपूर साहब, जिसमें वो खुद लीड रोल निभा रहे थे। सो ये फिल्म रिलीज हुई थी 4 घंटे 15 मिनट के रन टाइम के साथ विद 2 इंटरमिशंस। हाँ, और जब ये आई तो फिर राज कपूर स्टूडियोज डेप्थ में चले गए, क्योंकि इट हैपन टू बी अ डिजास्टर। बट ऑन अ कॉन्ट्ररी, 1988 में राज कपूर साहब के डेथ के बाद ये फिल्म एक बार फिर से रिलीज की गई, विच हैपन टू बी एन इंस्टेंट हिट। तो बाबू मोशाय, बॉक्स ऑफिस किसी फिल्म की डेस्टिनी कभी डिसाइड नहीं करती। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: बॉक्स ऑफिस किसी फिल्म की डेस्टिनी डिसाइड नहीं करता।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: So my dear बाबू मोशाय, टाइम एंड अगेन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बहुत सारी ऐसी फिल्में मिली हैं हमें जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट लेटर ऑन उन मूवीज को कल्ट क्लासिक का दर्जा जरूर दिया गया। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं ऐसी ही फिल्मों को डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट जाने भी दो यारो, नंबर दो पे कागज के फूल, नंबर तीन पे मेरा नाम जोकर, और अब बारी है नंबर चार पे टू डिस्कस अक्टूबर जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2018, डायरेक्टेड बाय सुजीत सरकार। ये एक अंडरस्टेटेड ड्रामा थी जो अनकंडीशनल लव को टिपिकल रिलेशनशिप्स के बियॉन्ड एक्सप्लोर करती नजर आई। फिल्म की स्टैटिक पेसिंग हो, उसके रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग हो, ये सारी चीजें एक मेनस्ट्रीम बॉलीवुड एक्सपेक्टेशंस को तोड़ती हैं। एंड दिस इज वाई ऑडियंस को ये मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई थी। चलिए मूविंग ऑन नंबर पांच पे, लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म ओए लकी लकी ओए। हां जी, ये मूवी आई थी इन द ईयर 2008, डायरेक्टेड बाय दिबाकर बैनर्जी, जिसमें अभय देओल, परेश रावल, नीतू चंद्रा और ऋचा चड्ढा जैसे एक्टर्स थे। सो ये एक क्राइम कॉमेडी है जिसमें अभय देओल एक एंटी हीरो का रोल निभाते हैं जो एक दिल्ली के मिडिल क्लास जिंदगी से आता है। बाकी ये मूवी नहीं चलने का एक मेजर रीजन था कि 26/11 मुंबई अटैक्स के दो दिनों के बाद ही ये रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से इट डिडंट रिसीव मच आईबॉल्स। बट आज इस फिल्म के मिडिल क्लास नुआंस नैरेटिव्स जो हैं, वो इसको कल्ट क्लासिक का दर्जा देते हैं। तो बाबू मोशाय, मेरी इस लिस्ट में अगर आप भी कोई ऐसी ही फिल्म ऐड करना चाहें, देन फील फ्री टू डू दैट। उसके लिए मिर्ची श्रुति के नाम से फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करो। एंड मीनवाइल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
2: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज। फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सो अली खान, हमने सुना है कि सैफ एंड कुणाल बोथ आर ग्रेट कुक्स, आप क्या बना सकते हो?
3: थियोरी में तो मैं भी दाल चावल बना सकती हूँ, थियोरी में। कभी मतलब वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिला है, लाइक इट हैजंट गॉट दैट बैड कि मुझे किचन में जाने की जरूरत हुई है अब तक। कुणाल कुक्स वेरी वेल एंड भाई कैन मेक वेरी गुड स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड पास्ता।
2: दैट वाज सोहा अली खान ऑन बॉलीवुड बोलडाल। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोलडाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोलडाल
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
5: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती है, हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। अक्षय कुमार स्टारर अपकमिंग साईफाई एक्शन सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म समुक में एक नई एंट्री हुई है। नाम है इनका बनिता संधु। हां जी, इन एक्ट्रेस को हमने अक्टूबर, सरदार उधम सिंह, मैं वापस आऊंगा और इंटरनेशनल सीरीज ब्रिजर्टन में भी देखा है। सो कनिक वर्मा डायरेक्टोरियल इस अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म सामुक में बनीता का किरदार एक ब्रिटिश बॉर्न इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट का होने वाला है, जिसके बारे में बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। धुरंधर द रिवेंज का टीवी प्रीमियर होने वाला है, हां जी, और ये होगा स्टार गोल्ड पे फ्रॉम द 18th ऑफ अक्टूबर। आपको बता दूं कि टीवी लायक बनाने के लिए इस मूवी से बहुत सारे गोर विजुअल्स को हटाया गया है, जिसकी वजह से इस फिल्म के ओरिजिनल रन टाइम में भी कमी आई है। 70 दिन, बस 70 दिन है तुम्हारे पास। सो शाहरुख खान की अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म किंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि 70 दिनों में इसका रिलीज होने वाला है ना, विच इज क्रिसमस ईव। सो एज वी ऑलरेडी नो दैट शाहरुख खान का बर्थडे इज राउंड द कॉर्नर, यानी 2nd of November को, और इसी दिन सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टोरियल इस फिल्म का टीजर भी रिलीज किया जाएगा। मतलब बर्थडे होगा इंडस्ट्री के बादशाह शाहरुख खान का, लेकिन गिफ्ट मिलेगा हमें एज एन ऑडियंस। वैसे पता ना हो तो बता दूं, इस फिल्म में करीना कपूर खान का भी एक स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है, बट फॉर अ डांस नंबर विद शाहरुख खान, और इसका नाम है डैडी कूल। वेल, डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन यार। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। एक सच्चे फिल्मजी ने तो गेस कर लिया होगा दैट ऑफ कोर्स फिल्म खलनायक की बात हो रही है, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 1993, डायरेक्टेड बाय सुभाष घाई, जिसमें संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ लीड रोल्स निभाते नजर आए थे। सो इस मूवी के बारे में नीता लूला, हु इज अ वेल नोन रेप्यूटेड डिजाइनर ऑफ आर इंडस्ट्री, उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग सी बात इंटरव्यू में शेयर की। ये जो गाना है ना, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, तो उसके लिए डायरेक्टर सुभाष घाई ने नीता लूला को हायर किया और कहा कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर गाने के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करवानी है, तो आपके पास जो ऑप्शन है मुझे बता दो। जिस पे नीता लूना ने कहा कि सर अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज मुझे ये गाना पहले सुना दोगे, एंड ही वाज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक है, गाना क्यों सुनना है भाई, आपको कॉस्ट्यूम डिजाइन देने हैं ना मुझे। बट शी स्टिल इंसिस्टेड कि प्लीज आप सुना तो दो। मीनवाइल सुभाष घई के पास रफ ड्राफ्ट था ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉन्ग, उन्होंने नीता लूला को ये गाना सुनाया और जब तक वो गाना खत्म हुआ नीता लूला ने उनके सामने एक स्केच प्रोड्यूस किया। सो बेसिकली नीता लूला ने वो गाना सुनते सुनते स्केच बनाया था, विच वॉज द ड्रेस जो इस गाने के लिए तैयार हुआ, एंड दैट्स वेन शी बिकेम हिज फेवरेट। विच रिमाइंड्स मी कि यार जिंदगी में हम भी कभी कभी ऐसे सिचुएशन में आते हैं ना कि सामने बहुत बड़ा कोई इंसान है और हम क्योंकि न्यूबी हैं इन द इंडस्ट्री, वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम शेयरिंग आवर ओपिनियन, बट दैट्स द एग्जैक्ट मोमेंट जब आपको याद रखना होगा दैट यू शुड नेवर लेट एनीवन लुक डाउन ऑन यू जस्ट बिकॉज यू आर स्टार्टिंग आउट। बाकी तो समझदार को इशारा काफी यार। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट flavors at Absolute Barbecues.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
2: किसके यहाँ से?
3: स्वर्गीय अनिल चौहान.
2: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
3: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब. मैं बोल रहा हूँ
2: अनिल ही बोल रहा हूँ. स्वर्गीय नहीं हूँ मैं, जिंदा हूँ.
3: सर स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है. सर मैं से बोल रहा हूँ पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से.
2: हाँ.
3: तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए.
2: दिमाग खराब है तेरा? अबे मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम.
3: सर आप ये बेवकूफी की बात ना करें. आप एक तो जुबान संभाल की बात करें. मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ. आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने, आपकी रिपोर्ट आ गई है. सर आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट.
2: स्वर्गीय नहीं, तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है.
3: स्वर्गीय अनिल चौहान यार, आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ.
2: हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान? मैं जिंदा हूँ भाई, मैं रहा है घर परिवार वाले में. तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
3: कौन पागल हो गया आपकी? पोस्टमार्टम मेरी बात सुन लीजिए आप.
2: नहीं
3: मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया. स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई. बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने. दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो. एक ही रिपोर्ट है दोनों की.
2: डॉक्टर बोल रहा
3: हूँ. मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार. मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका. केस हम क्या करेंगे? केस तो मैं उन पर करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे. वो बाप बनने वाले
2: परिवार वाले आदमी से ही बात करता है. कौन है तेरी
3: बेवकूफी की बात मत करिए आप. आप आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके. पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं.
2: जी
3: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से?
2: तेरा दिमाग खराब हो गया.
3: मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए. आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है. अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं. आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक किया है. आपकी उम्र बहुत लंबी है, आप टेंशन ना लें.
2: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं.
3: सर मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है. अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Hi, this is Anuradha Podwal. I'm coming to perform in your city.
6: This is Vinod Rathore and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
7: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 PM onwards. In association with Lulu Hypermarket, iPay, Indomie Noodles, Green Printers, tickets available at all Lulu Hypermarket outlets, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6004369, an event by Rami Productions International.
8: Cut, cut.
9: Who that?
8: Jassi.
9: Jassi? Kaun si wali Jassi?
8: Jassi who has come, auntie ji?
9: Cut, cut. Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1.
10: Mirchi.
4: It's hot.

0: भाई, इन दूसरी कैटेगरी वालों का कोई धर्म ईमान नहीं होता क्या?
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हुआ आप और मैं आज बात कर रही हूँ दुनिया में पाए जाने वाले दो तरीके के फैंस की। हाँ जी, जिसमें फर्स्ट आर द पीपल जो किसी सेलिब्रिटी या किसी वेल नोन पर्सन को अप्रिशिएट करते हैं उसके काम के लिए, उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसकी अच्छी चीजों से अपनी जिंदगी में भी कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं। बट अगर इनको लगता है कि सामने वाला कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, वो अगर गलती कर रहा है तो भाई ये इंसान गलत को गलत बोलता है। लेकिन जो दूसरी प्रजाति के फैंस है ना, ये अंधभक्त टाइप होते हैं यार। इनके लिए दुनिया इधर की उधर क्यों हो जाए, लेकिन इनका सिलेब कभी गलत नहीं हो सकता, और अगर होगा भी तो ये उसको डिफेंड करते नजर आएंगे। और ये वही लोग हैं जिनके साथ पर्सनली अगर 0.1% की भी ऊंच नीच हो जाए ना, तो ये त्राहिमाम त्राहिमाम लेकर आ जाते हैं, तब इनके सारे गलत सही की दलीलों की किताब खुल जाती है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मैं तो दूसरे कैटेगरी वालों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखती हूँ, बाकी तो आप देख लीजिए, समझदार को इशारा काफी होता है यार। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: इस घर का तापमान तो सुपर हाई है सर।
1: ओटीटी एंड चिल।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हूं आप, मैं हूं आपके साथ श्रुति। और पिछले कुछ दिनों से बिग बॉस 20 को लेकर मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार कितना बोरिंग होता जा रहा है सब कुछ। इनफैक्ट मुझे रिग्ड भी लग रही थी चीजें, क्योंकि हर दूसरा इंसान जो आ रहा था प्रमोशंस के लिए ऑन द सेट्स वो सिर्फ और सिर्फ काजी का नाम ले रहा था और लोग उसकी गलतियों को गिन ही नहीं रहे थे। जैसे वो सी का बटन, तू है सी का बटन, थूकूंगा तो प्रेगनेंट हो जाएगा एंड वॉट नॉट, ये सारी चीजें करते रहते हैं बट ये हाईलाइट नहीं होता। इनफैक्ट कनिका ने भी लव को जो उनके चेहरे को लेकर कॉमेंट किया था उसको भी हाईलाइट नहीं किया गया। बट एपिसोड 38 में जो हुआ है भाई साहब नकुल और गुल्लू के बीच में, आई अग्री इट वॉज नकुल्स फॉल्ट कि वो एकदम से ऐसे चार्ज करते हुए आया, बट गुल्लू भी पीछे नहीं हटा था। आप पूरी सिचुएशन को अच्छे से पीक डिटेलिंग के साथ देखोगे तो अलग अलग चीजें नजर आएंगी। उसमें ही मैंने नोटिस किया कि भाई माही ऐसे कूद के नकुल के पीठ पे जो उन्होंने ठपाक से मारा है थप्पड़, और उसके बाद झंडा लेके घूम रही थी कि भाई निकालो इस बंदे को, ये रहना नहीं चाहिए यहाँ। बट जिस टाइम तक मेरा ये ओपिनियन आप तक पहुंचेगा तब तक अगर नकुल बाहर हो गया तो मेरा सवाल बस ये होगा बिग बॉस से कि नकुल ने तो सिर्फ चार्ज किया था ना सर, माही ने तो बजाते हाथ साफ किया है अपना, उसका क्या? मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल। दुनिया

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
9: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स।
10: जबरदस्त ट्रैक्स।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन।
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: हमारे स्कूल के वो दिन जब दोस्ती सिर्फ एक नाम और फोन नंबर तक लिमिटेड नहीं होता था।
1: 90 ml with Shruti,
0: क्योंकि उसके लिए हमारे पास स्लैम बुक्स हुआ करते थे ना बाबू मोशाय, वो कलरफुल पेजेस, वो ग्लिटर पेन्स और हर फ्रेंड के लिए वो आइकॉनिक सवाल, व्हाट्स योर फेवरेट कलर, व्हाट्स योर बिगेस्ट सीक्रेट, हुज योर क्रश, और सबसे डेंजरस सवाल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। कोई लिखता था यू आर माय बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, कोई बनाता था छोटा सा कार्टून, तो कोई क्रश का नाम लिखने के बजाय सिर्फ इनिशियल्स छोड़ देता था ताकि सामने वाला समझ भी जाए और पकड़ा भी ना जाए। और यार स्लैम बुक भरवाना भी किसी अचीवमेंट से कम नहीं था। अपने फेवरेट दोस्त से स्लैम बुक भरवाने के लिए तो हमें पीछे पढ़ना पड़ता था, फिर घर आकर एक एक पेज पढ़ना, हैंडराइटिंग देखना, पुराने आंसर्स पर हंसना और कभी कभी किसी के लिखे एक सेंटेंस को बार बार पढ़ना। हाँ, आज इंस्टाग्राम पे स्टोरीज हैं, चैट्स हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, लेकिन उस वक्त स्लैम बुक में लोग सिर्फ आंसर्स नहीं, अपने वक्त का एक छोटा सा हिस्सा छोड़ जाते थे। और सबसे इमोशनल बात पता है क्या, जिनके नाम कभी हमने फ्रेंड्स फॉरएवर के नीचे लिखे थे उनमें से कुछ लोग आज हमारी जिंदगी में हैं भी नहीं। पर वो स्लैम बुक आज भी खोल लो तो एक पल के लिए लगता है कि स्कूल की बेल बजने वाली है, लंच ब्रेक होने वाला है और सब मिलकर एक दूसरे के स्लैम बुक्स भरने वाले हैं। भाई मेरे घर के बैग बॉक्स में तो मेरे दो चार स्लैम बुक्स ऐसे ही आज भी पड़े हुए हैं। व्हाट इज योर अपडेट? डू लेट मी नो अबाउट दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: मीठी मिर्ची प्रेजेंटेड बाय एब्सोल्यूट बारबेक्यूज, फ्रॉम सेवरी टू स्वीट, एक्सपीरियंस द अल्टीमेट फ्लेवर्स एट एब्सोल्यूट बारबेक्यूज।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: नेशनल अवार्ड विनर अजय देवगन, क्या आपको हमेशा से एक्टिंग करनी थी?
3: इट वॉज नेवर एक्टिंग, इट वॉज ऑलवेज आई यूज टू मेक माई ओन फिल्म्स. आई वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, आई यूज टू एडिट, आई यूज टू डायरेक्ट, आई वॉज अ कैमरामैन, आई यूज टू डू एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर एक्टिंग.
2: व्हाट कैन आई से अजय देवगन, आई एम जस्ट ग्लैड कि फूल और कांटे हैपेंड. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा.
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: खट खट,
5: कौन है?
4: ईशांत.
5: ईशांत कौन?
4: ईशांत गदाधारी भीम. ईशांत
5: खट खट, who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1.
7: Mirchi, it's hot.

0: मम्मा माशूका मूड अच्छा हो जाता है यार जैसे ही थर्सडे आ जाता है। मतलब सच बता रहे हैं, भले ही सैलरी खत्म हो चुकी है लेकिन फिर भी वीकेंड की एक फीलिंग ही अलग होती है, और वही फीलिंग लेकर आ गया है आपके साथ मस्तमौला गौरव और लेकर अपना शो जिसे कहते हैं
1: शाम शानदार, brought to you by KIMS Health Medical Center।
0: हाँ जी, तो मैं आपको बता दूं कि शाम शानदार की शुरुआत करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात ये बतानी है कि दोस्तों हमारे कतर में बहुत सारी चीजें इस वीकेंड हो रही हैं जिसका हिस्सा आपको बनना ही बनना है। एंड किस तरह से कतर के बैंकिंग एसेट की बात की जाए तो हमारी कितनी बड़ी इकोनॉमी बढ़ी है, लिक्विडिटी किस तरह से स्ट्रांग हुई है ये बताएंगे, साथ ही साथ क्या लग रहा है आने वाले टाइम में मौसम का क्या हालचाल रहेगा, कैसा मौसम होने वाला है इस वीकेंड, ये सब कुछ, और टेम्परेरी रोड क्लोजर अनाउंस हुआ लुसेल बुलेवर्ड पे, वो भी आपके कानों तक पहुंचाएंगे, सब कुछ यही मिर्ची पर आपको पता लगेगा। लेकिन मस्त मौला गौरव के साथ रहेंगे तभी तो पता लगेगा दोस्त, है जी 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, brought to you by KIMS Health Medical Center।

0: एक चीज लेकिन हम सब जानते हैं कि घर बनाने का जो सपना है ना वो कितना कठिन होता है। एंड ऐसा जब कोई एग्जीबिशन लगे जहां पर आपके सपनों का घर आसानी से बन जाए, उसके लिए क्या इक्विपमेंट्स लगे ये पता लग जाए तो कैसा हो, तो आ रहा है कतर में बिल्ड योर हाउस एग्जीबिशन #974974। यस, हम आपको बता दें कतर में अब तैयारियां जोर शोर पर है। 7th एडिशन ऑफ बिल्ड योर हाउस कतर 2026 26 से 28 अक्टूबर QNCC में होने वाला है। यस, होम ओनर्स के लिए ढेर सारे सॉल्यूशन लेकर आता है, बिल्डिंग से लेकर वहां पर क्या इंटीरियर होना चाहिए, कंप्लीट होने के बाद कैसा होना चाहिए, आपके घर को और खूबसूरत कैसे बनाया जाए। और इसके लिए बकायदा एज अ गोल्ड स्पॉन्सर हमारे कतर की एक फर्म जो कि 1995 में एस्टैब्लिश हुई थी, वो पूरा अपना एक पवेलियन लेकर आ रही है, अल हताब ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। एंड आई एम श्योर कतर के इस पर्टिकुलर एग्जीबिशन में वो लोग जरूर इंटरेस्ट लेंगे जो कहीं ना कहीं भाई उस फील्ड से है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप की बात करें तो बिल्डिंग्स बनाने का काम करते हैं, घर बनाने का काम करते हैं। उनके लिए ये एक मौका होगा अपने लिए बेस्ट तरीके से खुद को दिखाने का और साथ ही साथ दुनिया से आ रहे ढेर सारे अदर बड़े ब्रांड्स के साथ टाई अप करने का जो कि होम बिल्डिंग प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं। तो अगर आप भी उस फील्ड से जुड़े हैं जहां रियल स्टेट होम बिल्डिंग एक बड़ा काम है, तो आपके लिए एक रूफ के अंदर ढेर सारे स्टॉल्स आ रहे हैं और ये पवेलियन होंगे QNCC में 26 to 28 अक्टूबर 2026। वैसे जब भी बात घर बनाने की आती है, मुझे आज भी याद है हमारे एक शंकर दादा थे, वो जब मेरा फ्लैट बनाने आए थे ना, तो उनकी एज देख के हमें लगा अरे ये क्या ही कर पाएंगे, इतनी एज हो गई है। लेकिन जो उनके हाथ की कारीगरी थी, हम आज भी अपने घर के एक कोने को देखते तो हमेशा मुझे वो याद आते, क्योंकि कहते अरे ये हम देखो भाई ऐसा बना देंगे तुम्हें आइडिया नहीं है। यार कभी कभी जब आपका घर बन रहा हो ना, आप उन मजदूरों से जरूर मिलने जाइए जो उसे बना रहे, वो ना आपको अपने हुनर को दिखाते हैं। 89.6 मिर्ची 1 इट्स ऑल।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: बिल्कुल खामोश ना रहिए, बल्कि बहुत सारा शोर मचाइए। आफ्टर ऑल वीकेंड इज हियर, हमें सेलिब्रेट करना है। वीकेंड मौसम सब साथ दे दे तो इंसान बेहतरीन से बेहतरीन काम करेगा। लेकिन एक काम जो आपको बार बार याद दिलाता हूँ और आज एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, वो है गोल्ड में इन्वेस्ट कर देने का, क्योंकि रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे दोस्त। अल फरदान एक्सचेंज गोल्ड रेट
1: गोल्ड अपडेट।
0: पहले अगर बात करें तो अल फरदान एक्सचेंज जो हमारे कतर में ऑफिशियल एजेंट है पैम के, यस पैम, जो कि स्विस सर्टिफाइड 24 कैरेट गोल्ड की गारंटी के साथ आता है, उस पैम का 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार आपको मिलेगा 566 कतरी रियाल। पैम 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 2649 कतरी रियाल। पैम का 10 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार आपको मिल जाएगा 5229 कतरी रियाल में। पैम का 1 औंस गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 16161 कतरी रियाल। एंड पैम का 10 तोला का गोल्ड बार अगर आप लेते हैं तो आज ये 60,000 से बिकम 59,990 कतारी रियाल। ये बेहतरीन टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि एक बार फेस्टिवल सीजन आएंगे, प्राइसेस ऊपर जाएंगे, रिटर्न आपको अच्छे मिल जाएंगे। एंड मस्मोला गौर ने बताया तो थोड़ा बहुत हमको भी पार्टी आप देंगे। मिर्ची थॉट।
1: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
2: and earn Qatar Airways Avios today.
1: Visit our branches or download the app now.

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen. Beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super specialty clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
9: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musty, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
8: This initiative is driven by GWM.
9: Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 5505099389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
10: शॉपिंग करो लूलू में और बिल हो सकता है बिल्कुल फ्री। जी हाँ, लूलू हाइपरमार्केट लेकर आया है लूलू 2026 फ्री ट्रॉलीज। विन वन ऑफ 2026 फ्री ट्रॉलीज और जीतने के लिए बस फॉलो करो थ्री सिंपल स्टेप्स। स्टेप वन, शॉप लूलू हाइपरमार्केट के किसी भी ब्रांच के सुपरमार्केट सेक्शन में जाओ और शॉपिंग करो। स्टेप टू, स्टे ट्यून्ड, चेकआउट काउंटर पर ऑटोमेटेड सिस्टम रैंडमली सिलेक्ट करेगा लकी विनर। स्टेप थ्री, विन। अगर बिलिंग के टाइम आप सिलेक्ट हो गए तो आपका पूरा शॉपिंग बिल फ्री। तो देर किस बात की, शॉपिंग करो लूलू में। लूलू हाइपरमार्केट, शॉप करो, चांस पाओ और ट्रॉली भर शॉपिंग फ्री में ले जाओ। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
11: इट्स बैक एलजी एंड जंबो की मेगा प्रमोशन। एलजी अप्लायंसेस, एसीज, गेमिंग मॉनिटर्स, टीवीज और ऑडियो प्रोडक्ट्स पर अश्योर्ड गिफ्ट वाउचर्स, प्लस अप टू 3 इयर्स एक्सटेंडेड वारंटी, मुकाफा पॉइंट्स, नजूम एयर माइल्स और एवियोस। Visit LG brand shops, jumbo stores, or JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
12: कट कट,
13: अबे कौन है?
12: उत्तपा।
13: उत्तपा कौन?
12: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
13: खट खट, who that?
14: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: अरे भाई मौसम बदलेगा तो रातें लंबी होंगी। सूरज चाचू को लग रहा है धीरे धीरे दया आनी शुरू हुई है, तभी तो मौसम में बदलाव दिखाई पड़ रहा है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल वेदर अपडेट में मस्त फॉलो करो। सबसे पहले आपको बताना चाहेगा कि काफी ज्यादा क्लाउडी स्काइज हो सकते हैं। डे टाइम में वेदर थोड़ा सा हॉट रहेगा, पिछले दिनों के मुकाबले ये जरूर कम होगा, लेकिन नाइट्स विल बी लिटिल कूलर एंड हेजी टू मिस्टी कंडीशंस भी बताई गई है। कुल मिलाकर टेम्परेचर की एक्सपेक्टेशन है 39 डिग्री मैक्सिमम एंड 28 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। और बड़ी बात यह है, इस दौरान आपको ह्यूमिडिटी कभी कभी फील होगी, पर हवाओं की रफ्तार भी आएगी। तो कुल मिलाकर अब मौसम हो रहा है चेंज, और हमारे और आपके लिए पॉसिबिलिटीज यही होगी कि वीकेंड पे अब हर बार कहीं ना कहीं की प्लानिंग होगी एंड पॉटलक से लेकर बीच आउटिंग से लेकर बारबेक्यू सब कुछ सेट हो जाएगा। तो तैयार हो जाओ भाई, सीजन एंजॉय करने वाला आ रहा है, अब हमें बहुत सारी मस्ती करनी है। मिर्ची इट्स हॉट।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अनिल कपूर सर, I'm sure आप ये सुन सुन के थक चुके हैं कि आप इतनी यंग कैसे दिखते हैं, but I really would like to know, आपको खाने में क्या पसंद है?
3: जैसे मैं क्या, मैं हर चीज खाता हूँ, but I love all kinds of food. I love Japanese food, Chinese food, Indian food, North Indian food, South Indian food, और Gujarati food. Sometimes I love Thai food, Mexican food. खाने में I'm not fussy about food. दिल से प्यार से अगर कोई बना के दे तो मुझे अच्छा लगता है.
2: आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood Bolda. Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
5: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
6: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी.
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
8: 89.6
9: FM, Mirchi 1. It's hot.

सोचिए अरिजीत सिंह की ब्यूटी है भैया, कि हम सिर्फ पहले बोलते थे गड्ढा बहुत गहरा है, लेकिन गहरा हुआ गाना सुनने के बाद लगता है यार ये शब्द कितने खूबसूरत है। खैर काश मेरे वॉलेट के भी हालात इतने ही खूबसूरत होते इस गाने की तरह। लेकिन फिलहाल अगर आपके पास बचे हैं तो आई पे के थ्रू आप इसे घर भेजिए, क्योंकि फायदे वाले रेट्स है। एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26.04 है, 26 रुपए 4 पैसे भारतीय मुद्रा में मिल जाएंगे। वहीं अगर हम पाकिस्तान रुपीज की बात करें तो वाहिद कतरी रियाल के बदले जनाब 76.10 पाकिस्तान रुपीज का रेट। वहीं श्रीलंका रुपीज अगेंस्ट 1 कतरी रियाल इज 90.92। तपाई को नेपाली रुपीज का रेट दाजू 1 कतरी रियाल के बदले 41.60। हाँ जी 41.60 का रेट छो हाजूर घर भेजन लाइस आई टाइम छाई नहीं। अगर इसके बाद बंधो बांग्लादेश का बात करेगा दादा एक्टा कतरी रियाल के बदले 33.87 तो 33.87 बाड़ी तपाटी दो। पैसा अगर है जल्दी पैसा भेज दो, क्योंकि आई पे आपको बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। आई पे ऐप डाउनलोड करते ही वोडाफोन माई बुक का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री, हजारों डील्स वहां है, साथ ही साथ मैन टू मैन ट्रांसफर की सबसे कम फीस हमारे कतर में यही तो लेते हैं। कुल मिलाकर आपके लिए फायदे का सौदा है एक ऐप, बहुत सारे सॉल्यूशंस। आई पे जाओ डाउनलोड कर लो, हम जल्दी इससे कुछ खास कराने वाले हैं। मिर्ची थॉट

0: song is driven by Unipart, your one-step destination for quality auto parts, trusted brands and unbeatable value. Unipart, a part of your life.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Murga, murga. Nafis wala murga. Mirchi, murga.
2: हेलो
3: आकाश
2: जी,
3: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
2: हाँ, बिल्कुल
3: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
2: मेरी गर्लफ्रेंड है।
3: ओहो, यही मिली है आपको?
2: जी, बहुत पंगे लेती है।
3: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
2: ठीक है,
3: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
2: आकाश मल्होत्रा।
3: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे,
2: राइट?
3: चलिए। अच्छा, इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा, ठीक है?
2: जी, डेफिनेटली।
3: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
2: अच्छा,
3: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
2: क्या कह रहे हैं?
3: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
2: सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सभी होता है?
3: नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली है तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, आप मजे लीजिएगा, है ना?
2: सर, देखिए,
3: हाँ बताइए।
2: फन की बात अलग है, लेकिन उसको सीरियसली गुस्सा आ गया। और
3: अरे मेरी बात तो सुनिए, गुस्सा आपको आज,
2: मैं तो प्लीज रहने दीजिए इस चीज को, मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
3: चलिए, मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
2: जी,
3: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ों को। आकाश, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारा मुर्गा बन गया।
2: मेरा बन गया वो कुकड़ों को।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट। मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मिल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मिल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
4: Hi, this is Anuradha Poudwal. I'm coming to perform in your city.
5: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
6: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 PM onwards. In association with Lulu Hypermarket, iPay, Indomie Noodles, Green Printers, tickets available at all Lulu Hypermarket outlets. Online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6000-4369 and event by Rami Productions International.
7: Shopping karo Lulu में और बिल हो सकता है बिल्कुल फ्री। जी हाँ, लूलू हाइपरमार्केट लेकर आया है लूलू 2026 फ्री ट्रॉलीज। विन वन ऑफ 2026 फ्री ट्रॉलीज और जीतने के लिए बस फॉलो करो 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, शॉप लूलू हाइपरमार्केट के किसी भी ब्रांच के सुपरमार्केट सेक्शन में जाओ और शॉपिंग करो। स्टेप 2, स्टे ट्यून्ड, चेकआउट काउंटर पर ऑटोमेटेड सिस्टम रैंडमली सिलेक्ट करेगा लकी विनर। स्टेप 3, विन। अगर बिलिंग के टाइम आप सिलेक्ट हो गए तो आपका पूरा शॉपिंग बिल फ्री। तो देर किस बात की, शॉपिंग करो लूलू में, लूलू हाइपरमार्केट। शॉप करो, चांस पाओ और ट्रॉली भर शॉपिंग फ्री में ले जाओ। लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप। It's back! LG and Jumbo की मेगा प्रमोशन। LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs और audio products पर assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles और Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores या JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
8: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा, जा।
9: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
10: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन 89.6
11: 89.6 FM Mirchi 1 It's hot.

0: ठंड की दस्तक होते ही बाजार गुलजार होने वाले।
1: मस्त मौला गौरव
0: आपको बता दे, वैसे तो तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं, चाहे वो कमर्शियल लाइसेंस के हो, अगर आप सी लाइन साइड में कोई भी बिजनेस या सर्विस इन्वॉल्व करना चाहते हैं इस पूरे विंटर सीजन, एंड अब बारी मियां बाजार पार्क की भी। यस, MIA बाजार जो अब आपके लिए MIA पार्क में आने वाला है स्टार्टिंग 30th and 31st October एवरी वीकेंड दिस विल हैपन। एंड द बेस्ट पार्ट इज 2026 से शुरू होकर 2027 जब तक मौसम साथ दे रहा है तब तक ये MIA बाजार चलेगा। दोस्तों इसके लिए आप बकायदा इनकी वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं एंड जाकर देख सकते हैं कि अगर आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन कराना है फॉर योर स्टॉल्स तो आप कर सकते हैं। इन सबके बीच इस बाजार की सबसे खास बात विंटर सीजन एंड अब बारी मियां बाजार पार्क की भी। यस, MIA बाजार जो अब आपके लिए MIA पार्क में आने वाला है स्टार्टिंग 30th and 31st October एवरी वीकेंड दिस विल हैपन। एंड द बेस्ट पार्ट इज 2026 से शुरू होकर 2027 जब तक मौसम साथ दे रहा है तब तक ये MIA बाजार चलेगा। दोस्तों इसके लिए आप बकायदा इनकी वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं एंड जाकर देख सकते हैं कि अगर

0: बिल्कुल फ्री, तो तैयार हो जाइए। दोपहर 12 बजे से देर रात 12 बजे तक चला करेगा, 30th अक्टूबर 2026 से इसकी शुरुआत हो जाएगी, फिर हर वीकेंड फ्राइडे सैटरडे आपको मिलने वाला है। तो तैयार है ना? बस मसमोलो गौरव यही कहेगा, इंतजार हुआ खत्म, मौसम अच्छा होते ही चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं, बस अब हर वीकेंड आप अपने अंदर एनर्जी जोश लाओ और घूमने निकल जाओ। मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: आपको भी स्पीड एडन रश और हाई स्पीड ड्रामा पसंद है तो मोटो जीपी है ना।
1: मस्त मौला गौरव
0: रफ्तार के शौकीन हो, आपके लिए मस्त मौला गौरव ले आया है वो बात जो अपने कतर में होने जा रही है। यस, मोटो जीपी कतर एवेज ग्रैंड प्री ऑफ कतर 2026 की तारीख आ गई है। 6-8 नवंबर हमारे कतर में होने जा रहा है मोटो जीपी कतर एवेज ग्रैंड प्री ऑफ कतर 2026। कह सकते हैं ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम मोटरसाइकिलिंग रेस है जिसकी सीरीज यहां भी अब होने जा रही है और ये इकलौता है जो नाइट रेस के रूप में जाना जाता है। यानी कि कुल मिलाकर मोटो जीपी की उस नाइट रेस का मजा लेना है जो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट होती है, उसके लिए आपको मोटो जीपी के उस कैलेंडर की तरफ बढ़ना पड़ेगा जहां पर हमारे कतर का भी नाम है। यस, एंड दिस 6th of November to 8th of November लुसेल इंटरनेशनल सर्किट पर होने वाली है ये ओनली नाइट रेस ऑफ द सीजन। तो मोटो जीपी के शौकीनों, अगर ओनली नाइट रेस ऑफ द सीजन देखनी है, दुनिया किसी भी कोने में आपका दोस्त यार जो कहता है यार मुझे ना ये चीज बहुत बुलाती है, तो आप उसको कतर बुला लो और बता दो ओनली नाइट रेस ऑफ दिस सीरीज इज गोइंग टू हैपन इन कतर। सो ऐसे में मस्त मौला गौरव बस इतना ही कहेगा हबीबी कम टू कतर, क्योंकि मोटो जीपी हो या फिर मोटो से रिलेटेड कोई और एक्टिविटी, सब कुछ बेस्ट पूरी दुनिया में अगर कोई कर सकता है तो हमारा कतर। वेलकम टू कतर, मिर्ची थॉट
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: संबी चाउटिंग का
1: मस्त मौला मस्त मौला गौरव मस्त मौला गौरव
0: 89.6 मिर्ची वन पर मस्त मौला गौरव आपके साथ है। एक प्री सीजन पार्टी कह सकते हैं, फेस्टिवल ऑफ वेकेशन एंड फन जो कल होने जा रहा है 974 बीच पर। यस, मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने बता दिया है कि अगर आप इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए अब तैयार है। 974 बीच पर होने वाला है कल ये जबरदस्त फेस्टिवल ऑफ वेकेशन एंड फन, जहां पर हर एज कैटेगरी लोग जा सकते हैं। एंड उससे भी खास बात, बच्चों के लिए बहुत कुछ है, इन्फ्लेटेबल्स, आर्ट एंड क्राफ्ट शो, बबल शो, फेस पेंटिंग, क्या चाहिए, सब कुछ है। और तो और बड़े भी एंजॉय कर सकते हैं। टिकट प्राइसेस बड़े ही एकदम पॉकेट फ्रेंडली, टिकट्स अंडर द एज ऑफ चिल्ड्रन 14 विल कॉस्ट 15 कतरी रियाल, हालांकि 6 साल से कम के बच्चों पे तो पैसे नहीं लगेंगे, वो बिल्कुल फ्री जाएंगे। और एडल्ट्स की बात की जाए तो दे हैव टू पे 35 कतरी रियाल। एंड शाम 3 बजे से देर शाम 7 बजे तक चलेगा ये फैमिली फ्रेंडली माहौल के साथ, आपके लिए ढेर सारी सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए एक बेहतरीन मौका है। एक प्री सीजन पार्टी कर लो, क्योंकि इसके बाद मौसम अच्छा होगा तो फिर खुदा आप एक से एक जगह जाओगे ही है, बीच आउटिंग करोगे। तो 974 बीच आपको बुला रहा है, कल जरूर पहुंचिए शाम 3 बजे से देर शाम 7 बजे तक, जहां होने वाला है ये फेस्टिवल ऑफ वेकेशन एंड फन। इस उम्मीद में कि हो सकता है हम आप कल टकरा जाए। मस्मोला और लेगा अलविदा, लौटेगा आप सैटरडे की शाम शानदार में ढेर सारी बातें लेकर एंड अपडेट्स लेकर मिर्ची पर। इट्स ऑल टाटा बाय, अभी भी मस्सलामा।
2: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

फेस्टिवल का सीजन है, वीकेंड का रीजन है और पार्टी का मूड तो ऑलरेडी बन ही चुका है. लाइट्स अप, म्यूजिक अप, एनर्जी अप, बिकॉज दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर डेका. सो हियर वी गो गाइस, लेट्स बिगिन द सेलिब्रेशन.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello, ye Swargi Anil Chauhan ke yahan se bol rahe hain bhai sahab?
2: Kiske yahan se?
3: स्वर्गीय अनिल चौहान
2: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
3: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब,
2: मैं बोल रहा हूँ अनिल ही बोल रहा हूँ, स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ
3: सर। स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है सर, मैं से बोल रहा हूँ पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से।
2: हाँ।
3: तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए।
2: दिमाग खराब है तेरा, अब मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम।
3: सर आप ये बेवकूफी की बात ना करें, आप एक तो जुबान संभाल की बात करें, मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने, आपकी रिपोर्ट आ गई है सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट।
2: सर ये नहीं, तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है।
3: स्वर्गीय अनिल चौहान यार, आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
2: हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई, मैं रहा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
3: कौन पागल हो गया आपकी? पोस्टमार्टम, मेरी बात सुन लीजिए आप, मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया, स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई, बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने। दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो, एक ही रिपोर्ट है दोनों की।
2: डॉक्टर बोल
3: रहा हूँ, मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार, मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका। केस आप क्या करेंगे? केस तो मैं उन पर करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे, वो बाप बनने वाले।
2: परिवार वाले आदमी से ऐसी बात करता है, कौन है तेरी
3: बेवकूफी की बात मत करिए आप आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके, पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं
2: जी।
3: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से? मेरी बात सुनिए, आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है। अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया है, आपकी उम्र बहुत लंबी है, आप टेंशन ना लें।
2: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं। क्या
3: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है, अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मिल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मिल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: GWM के मिर्ची रिचार्ज में आइडियल इंडियन स्कूल के बच्चों ने की ढेर सारी मस्ती एंड फन, लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
7: 89.6 मिर्ची वन से मैं हूँ आरजे मस्वाला गौरव, और मैं आया हूँ आज आइडियल इंडियन स्कूल में, और मेरे साथ ढेर सारे बच्चे हैं। यू गाइस एंजॉयड इट?
8: It was great fun. Thank you, Mirchi. Thank you, GWM.
9: Thank you, Mirchi, for the GWM recharge. It was really fun, especially the magic show.
10: And show Gaurav, Afin, thank you very much.
11: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
12: Yes, Bebo.
11: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
12: Yes.
11: कैच क्या है?
12: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स, और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
11: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
12: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
13: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
14: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start and lockout assistance, plus flexible payments and 7% cashback. Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
13: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
15: Hi, this is Anuradha Podwal. I'm coming to perform in your city.
16: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
17: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 PM onwards. In association with Lulu Hypermarket, iPay, Indomie Noodles, Green Printers, tickets available at all Lulu Hypermarket outlets, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6004369, an event by Rami Productions International.
18: Who that?
19: Zahir!
18: Zahir! Zahir who?
19: Zahir si baat hai, main hi hoon, aur koi nahi.
18: Cut, cut. Who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.
19: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We are gonna go.
20: On a ride.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन टिका बेबी। वीकेंड का मूड तो सेट हो ही गया है, अब बस वॉल्यूम बढ़ा दो एंड लेट्स पार्टी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
2: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
1: Powered by iPay Wallet.
3: अपनों को भेजिए पैसे with best rates iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
4: Let's do the iPay.
5: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
6: Your preferred health partner, Naseem.
2: Pan in Qatar at Papa John's. Order now.
1: Powered by iPay Wallet.
3: अपनों को भेजिए पैसे with best rates iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
4: Let's do the iPay.
5: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard.

0: Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
1: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
2: शॉपिंग करो लूनू में और बिल हो सकता है बिल्कुल फ्री. जी हाँ, लूनू हाइपरमार्केट लेकर आया है लूनू 2026 फ्री ट्रॉलीज. विन वन ऑफ 2026 फ्री ट्रॉलीज और जीतने के लिए बस फॉलो करो थ्री सिंपल स्टेप्स. स्टेप वन, शॉप लूनू हाइपरमार्केट के किसी भी ब्रांच के सुपरमार्केट सेक्शन में जाओ और शॉपिंग करो. स्टेप टू, स्टे ट्यून्ड. चेकआउट काउंटर पर ऑटोमेटेड सिस्टम रैंडमली सिलेक्ट करेगा लकी विनर. स्टेप थ्री, विन. अगर बिलिंग के टाइम आप सिलेक्ट हो गए तो आपका पूरा शॉपिंग बिल फ्री. तो देर किस बात की, शॉपिंग करो लूलू में. लूलू हाइपरमार्केट. शॉप करो, चांस पाओ और ट्रॉली भर शॉपिंग फ्री में ले जाओ. लूलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
3: खटखट,
4: हू दैट?
3: अकबर.
4: अकबर हू?
3: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे.
4: खटखट, हू दैट?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
7: on a ride.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
2: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
3: बहुत कुछ होगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।
6: It's back! It's back! LG and Jumbo ki mega promotion! LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs aur audio products par assured gift vouchers. Plus, up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles aur Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya js.qa. Hurry! Offer valid till 19th.

वेलकम बैक पीपल, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका। अब छुट्टी हो या ना हो, वीकेंड को सेलिब्रेशन बनाएंगे ना एक साथ ऑन क्लब मिर्च।

इंडिपेंडेंस का अभी भी फीवर जारी है ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल दिखा। अब इंडिपेंडेंस से स्ट्रेट टू पैसा, बिकॉज आफ्टर ऑल उसके ऊपर ही तो सब डिपेंडेंट है ना। क्लब मिर्ची इट इज।

क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका के साथ. दिस प्लेलिस्ट इज मूविंग फास्टर देन योर वीकेंड क्रश. वी हैव केसरिया फॉर यू राइट नाउ. लेट्स गो.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो ये कमलेश जी।
3: हाँ जी कौन?
2: कमलेश जी गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने लाजवंती ने वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
3: कौन से पैसे दिए तुम्हें?
2: नहीं देखिए एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का खिलाफ उसकी बाहर की दीवार देखो उसमें पुताई होनी है।
3: देखिए
2: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
3: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
3: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर किसी पैसे देता रहूंगा तुम्हें, बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे, कोई त्योहार नहीं है कोई फसल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
3: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती ना मान रहे।
4: I want to talk to you. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for. Because we feel we're all family. And my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
3: with us? Yes, madam, I'm there. I understand, मैं समझ रहा हूँ आपको. What is the amount?
4: Sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know how fond you are of trips, sir. So I am sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
3: No, not an issue. 750 only?
4: Yes, sir, absolutely.
2: Nah, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam gheje mein pad gayi.
5: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
6: Yeah, paga.
7: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
8: Yes, Bebo.
7: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
8: Yes.
7: Catch kya hai?
8: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
7: I still can't believe it. No catch.
8: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
9: It's back. It's back. Back. LG and Jumbo ki mega promotion. LG appliances, ACs, gaming monitors, TVs aur audio products par assured gift vouchers. Plus up to 3 years extended warranty, Mukafa points, Nujum, Air Miles aur Avios. Visit LG brand shops, Jumbo stores ya JS.QA. Hurry! Offer valid till 19th October.
10: Hello shops. Our product is phenomenal. One of a kind but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba ji se advice li to kehte hain.
11: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ प्रॉफिट आएगा।
10: रिलेटिव से एडवाइस स्लो तो कहते हैं
12: काम को टाइम दो 25 घंटे काम करो डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
10: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
13: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
14: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.
15: Ladies and gentlemen, we are going to go. We are

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: नेशनल अवार्ड विनर अजय देवगन, क्या आपको हमेशा से एक्टिंग करनी थी?
4: इट वॉज नेवर एक्टिंग, इट वॉज ऑलवेज आई यूज टू मेक माई ओन फिल्म्स. आई वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, आई यूज टू एडिट, आई यूज टू डायरेक्ट, आई वॉज अ कैमरामैन, आई यूज टू डू एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर एक्टिंग.
3: व्हाट कैन आई से अजय देवगन, आई एम जस्ट ग्लैड कि फूल और कांटे हैपेंड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल. ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
5: Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 55099389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
6: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

जहाँ सेलिब्रेशन हो वहाँ क्लब मिर्ची की एंट्री तो बनती है. तो चलो फिर से वापस जाएंगे ऑन द डांस फ्लोर विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनिका.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो मुकेश जी.
2: कौन
3: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
2: नहीं हो पाया भाई.
3: हाँ वो नहीं हो पाया सर.
2: हाँ नहीं हो पाया
3: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
2: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हारे जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये.
3: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
2: क्या समझ रहे हो भाई.
3: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
2: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
3: सर, वो
2: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया.
3: नहीं सर
2: actually... आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
3: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया.
2: क्यों नहीं हो पाया
3: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
2: है
3: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
2: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
3: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
2: क्या करा दूँ
3: सर, मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
2: कैसी FIR, दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
3: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप, गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
2: क्या गुस्सा ना करूँ, नई गाड़ी थी हमारी.
3: नहीं सर आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया.
2: उसमें
3: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला.
2: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
3: अच्छा सर,
2: मुझे चाहिए अपनी वापस.
3: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
2: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
3: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
4: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
2: तो जान निकाल दी हमारी.
4: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
2: कुकड़ू कू
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
7: यस बेबो.
6: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
7: यस yes.
6: कैच क्या है?
7: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ. डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो.
6: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच.
7: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो. दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.
8: Our business is our business. None of your business.
9: पर दीदी आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
11: 89.6 FM मिर्ची वन. It's hot.
12: Ladies and gentlemen, we are gonna go.
13: On a ride.

वेलकम बैक पीपल, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। अब छुट्टी हो या ना हो, वीकेंड को सेलिब्रेशन बनाएंगे ना एक साथ ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही. मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून.
2: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
3: और एड ब्रेक भी. मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
4: बार बार.
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM Mirchi 1. It's hot.
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We are
8: gonna go on a ride.
0: Club Mirchi with Oyontika and DJ Richard. Only on Mirchi. It's hot.
3: Wood ke gaane lagataar baar baar.
4: Baar baar.
3: Qatar ka number one radio station.
5: 89.6
6: FM Mirchi 1. It's hot.
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: देखिए कौशल, आपको देख के लगता नहीं है आप किसी चीज से डरते होंगे। डर लगता है आपको?
4: पानी के अलावा सांपों से बड़ा डर लगता है। डर से ज्यादा रिपल्स हो जाता हूँ, मुझे एकदम झंझरी सी मच जाती है एकदम शरीर में। क्या
3: जैसे झंझरी बोला ऐसे मुझे अचानक से वो सेंसिटिव टूथपेस्ट झंझनाहट। यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन,

go wild, you are go wild.

फेस्टिवल का सीजन है, वीकेंड का रीजन है और पार्टी का मूड तो ऑलरेडी बन ही चुका है. लाइट्स अप, म्यूजिक अप, एनर्जी अप, बिकॉज दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर डेका. सो हियर वी गो गाइस, लेट्स बिगिन द सेलिब्रेशन.

0: हेलो
1: आकाश
0: जी।
1: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
0: हाँ, बिल्कुल।
1: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
0: मेरी गर्लफ्रेंड है।
1: ओहो, यही मिली है आपको?
0: जी, बहुत पंगे लेती है।
1: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
0: ठीक है,
1: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
0: आकाश मल्होत्रा।
1: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे।
0: राइट, बिल्कुल।
1: चलिए, अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड
0: पूजा
1: पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा। ठीक है
0: जी, डेफिनेटली।
1: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
0: अच्छा,
1: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
0: क्या कह रहे हैं?
1: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
0: क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सब भी होता है?
1: नहीं नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली है तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, आप मजे लीजिएगा, है ना?
0: सर मेरी बात तो सुनिए।
1: हाँ बताइए।
0: फन की बात अलग है, लेकिन उसको सीरियसली गुस्सा आ गया। और
1: अरे नहीं, बात तो सुनिए, गुस्सा आपको आज
0: तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
1: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
0: जी,
1: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ू। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारे मुर्गा बन गया।
0: मेरा बन गया वो कुकड़ों को।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। 89.6
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
2: मिर्ची।

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन टिका बेबी। वीकेंड का मूड तो सेट हो ही गया है, अब बस वॉल्यूम बढ़ा दो एंड लेट्स पार्टी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
2: खट खट।
3: हू देयर?
2: अगर कर।
3: अगर कर हू?
2: अगर करना है तो कर, वरना छोड़ दे।
3: खट खट। हू देयर?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अनिल कपूर सर, I'm sure आप ये सुन सुन के थक चुके हैं कि आप इतनी यंग कैसे दिखते हैं, बट आई रियली वुड लाइक टू नो आपको खाने में क्या पसंद है।
4: जैसे मैं क्या, मैं हर चीज खाता हूँ, बट आई लव ऑल काइंड्स ऑफ फूड। आई लव जापानीज फूड, चाइनीज फूड, इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, और गुजराती फूड। समटाइम्स आई लव थाई फूड, मेक्सिकन फूड। खाने में आई एम नॉट फसी अबाउट फूड। दिल से प्यार से अगर कोई बना के दे तो मुझे अच्छा लगता है।
3: आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑल
1: बॉलीवुड बोल्डाल। Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi. It's hot.
5: Cut, cut.
6: Who that?
5: Butt.
6: Butt? अरे butt हूँ.
5: Butt, butt, butt, butt, butt, butt, butt. Bike बहुत आवाज करती है.
6: Cut, cut. Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.
8: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are

Welcome back, people. Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi Oyontika. अब छुट्टी हो या ना हो, वीकेंड को सेलिब्रेशन बनाएंगे ना एक साथ on Club Mirchi.

को पीस चाहिए पर व्हाट्सएप ग्रुप म्यूट करने की हिम्मत किसी में नहीं है। मुझ में है यार, दीदी शेरे बलोच है, ठीक है, और आपकी खातिर यहाँ पे बैठी है विथ लव मैची।

चकते इंडिया इंडिपेंडेंस का अभी भी फीवर जारी है ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन दिखा। अब इंडिपेंडेंस से स्ट्रेट टू पैसा, बिकॉज आफ्टर ऑल उसके ऊपर ही तो सब डिपेंडेंट है ना। क्लब मिर्ची रे।

मखना क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका के साथ. दिस प्लेलिस्ट इज मूविंग फास्टर देन योर वीकेंड क्रश. वी हैव केसरिया फॉर यू राइट नाउ. लेट्स गो.

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो
2: हेलो, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
1: किसके यहाँ से?
2: स्वर्गीय अनिल चौहान।
1: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
2: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब।
1: मैं बोल रहा हूँ, अनिल ही बोल रहा हूँ, स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ।
2: सर, स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है। सर, मैं से बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से। तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए।
1: दिमाग खराब है तेरा? अबे मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम।
2: सर, आप ये बेवकूफी की बात ना करें। आप एक तो जुबान संभाल के बात करें। मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं आप जिंदा है, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने, आपकी रिपोर्ट आ गई है। सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट।
1: सर, ये नहीं, तो अनिल चौहान से ही बात कर रहा है।
2: स्वर्गीय अनिल चौहान यार, आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
1: खराब हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई। मैं रहा घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
2: कौन पागल हो गया आपकी? पोस्टमार्टम, मेरी बात सुन लीजिए आप।
1: नहीं,
2: मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया। स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई। बीच में आप कैसे आ गए यार? कमाल कर दिया आपने। दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो। एक ही रिपोर्ट है दोनों की।
1: डॉक्टर बोल रहा
2: हूँ। मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार। मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका।
1: ऐसा
2: केस आप क्या करेंगे? केस तो मैं उन पर करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे। वो बाप बनने वाले
1: परिवार वाले आदमी से ही बात करता है। कौन है तेरी
2: बेवकूफी की बात मत करिए। आप आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके। पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं।
1: जी,
2: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से? मेरी बात सुनिए। आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है। अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं। आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक किया है। आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें।
1: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं।
2: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है। अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: खट खट।
5: कौन है?
4: अज्जू।
5: अज्जू कौन?
4: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
5: खट खट, हु दैट?
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go!

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: थोड़ी सी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहाँ कहाँ थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुँचाया।
7: यहाँ की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है।

0: 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: दोस्ती कैसे सुले मैडम? No sorry, no thank you.
2: भाई साहब, sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं, entertainment चाहिए.
3: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ entertainment खूब मिलेगा.
4: खूब मिलेगा. Qatar का number one radio station.
5: 89.6
6: FM, Mirchi One.
7: It's hot.
8: Ladies and gentlemen.

डेटा लीक। 2026 में कुछ भी सेफ नहीं है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। और तूने तो चोरी किया रे जिया।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योन दिखा. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर. और फ्यूचर किसने देखा है? प्रेजेंट में एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, फेस्टिव वाइब्स इन द एयर एंड पार्टी वाइब्स एवरीवेयर. लेट्स गो.

जहाँ सेलिब्रेशन हो वहाँ क्लब मिर्ची की एंट्री तो बनती है, तो चलो फिर से वापस जाएंगे ऑन द डांस फ्लोर विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो ये कमलेश जी।
3: हाँ जी कौन?
2: कमलेश जी गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने लाजवंती ने वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
3: कौन से पैसे दिए तुम्हें?
2: नहीं देखिए एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब उसकी बाहर की दीवार देखो उसमें पुताई होनी है।
3: देखिए
2: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
3: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
3: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चंदा मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
3: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती ना मान रहे।
4: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for. Because we feel we're all family. And my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
3: with us? Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
4: Sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
3: No, not an issue. 750 only?
4: Yes, sir, absolutely.
2: Nah, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam gireje mein pad gayi.
1: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
5: Yeah, paja.
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट
8: दोनों मिलेगा।
1: नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
1: FM Mirchi 1. It's hot.
10: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वेलकम बैक पीपल, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची ऑयल डिगा। अब छुट्टी हो या ना हो, वीकेंड को सेलिब्रेशन बनाएंगे ना एक साथ ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: So Ali Khan, हमने सुना है कि सैफ एंड कुनाल बोथ आर ग्रेट कुक्स. आप क्या बना सकते हो?
4: थियोरी में तो मैं भी दाल चावल बना सकती हूँ. थियोरी में कभी मतलब वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिला है. लाइक इट हैजंट गॉट दैट बैड कि मुझे किचन में जाने की जरूरत हुई है अब तक. कुनाल कुक्स वेरी वेल एंड भाई कैन मेक वेरी गुड स्क्रैम्बल्ड एग्स एंड पास्ता.
3: दैट वॉज सोहा अली खान ऑन बॉलीवुड बोलडाल. यू आर लिसनिंग टू मिर्ची. इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोलडाल.
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोलडाल. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
7: FM मिर्ची वन.
8: इट्स हॉट.
9: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो
10: ऑन अ राइड.

but go wild.

बड़ी साउंड ट्रैक बड़ा होना चाहिए. ऑलवेज दैट्स व्हाई क्लब मिर्ची इज योर फेवरेट प्लेस. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योनिका ग्रूविंग विद यू टुनाइट.

0: बच्चे लोग, तुमने कभी काला ताजमहल देखा है?
1: क्या क्या क्या?
0: कभी बिना पानी का समंदर देखा है?
1: नहीं तो।
0: रसगुल्ले से रसगुल हो जाए तो पता है कैसे दिखता है?
1: कैसा कैसा कैसा?
0: वो देखो, जीता जागता नमूना मिस शिवानी।
2: ए, ए, ए, क्या लगा रखा है ये सब? क्या लगा रखा है?
0: अरे बोर हो रहे हैं यार, कुछ तो मस्ती करने दो, कुछ तो करो, कुछ तो करो, अरे कुछ तो करो यार।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: मोहब्बत के हर रंग का एहसास ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.